मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 20 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम व्यापार आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार मंथन।

अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनिए समोस्वर में मुकुंद कौशल की ये देशभक्ति रचना।

0: जगजीत सिंह के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख श्री सी बी श्रीवास्तव का है, वाचक है मनीष तिर्की।
1: प्रकृति ने इस धरती पर जब प्राणियों को जन्म दिया तो उन्हें अपनी सुरक्षा और विकास के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं, शक्तियां और गुण भी दिए। परंतु मनुष्य, जो इस सृष्टि का सबसे समझदार प्राणी माना जाता है, अपने अभिमान में उनका उपयोग सामूहिक सहयोग और विकास के लिए न करके स्वार्थ की भावना से निज के वर्चस्व के लिए अधिक करना शुरू कर दिया। इसीलिए उसके वे गुण जो उसकी सुरक्षा और सुख उपभोग के लिए और उसकी प्रगति के लिए उपयोगी थे, अब उसके मन के विकार या दुर्गुण के रूप में व्याख्यायित किए जाने लगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सभी जो एक प्रसंग में सद्गुण हैं, आज के समाज में गलत रूप में प्रयोग में लाए जाने के कारण मनुष्य के दुर्गुण माने जाने लगे हैं तथा धार्मिक और नैतिक दृष्टि से दुराचार और दंडनीय कृत्यों में परिगणित किए जाने लगे हैं। विचार की बात है कि यदि ये हितकारी न होते तो प्रकृति ने प्राणियों में ये शक्तियाँ क्यों दी होती। काम से ही परिवार की वृद्धि और संरक्षण होता है और जीवन सरिता का प्रवाह होता है। क्रोध से ही स्वतः की रक्षा की जाती है। यदि किसी देश की सेना के मन में दुश्मन के प्रति क्रोध न हो तो रक्षा कैसे संभव होगी। इसी से स्पर्धा का भाव सुरक्षित होता है और आगे बढ़ने का हौसला तैयार होता है। पर इन्हीं सब का असीमित और अनियंत्रण उपयोग समाज में औरों के लिए अहितकारी हो जाता है और ऐसा अनुचित व्यवहार अपराध की श्रेणी में आ जाता है, जिसे विष कहा जाता है। विष तो किसी की मृत्यु का कारण बनता ही है, पर कभी उसी का उचित उपयोग प्राण रक्षा का प्रमुख साधन के रूप में भी होता है। कहा है, विषम अमृतम भवेत अमृतम विषमेव च। सवाल जीवन में सही दृष्टिकोण और उसके अनुसार सही और जनहितकारी उपयोग का है। आज सारे संसार में जहाँ भी मानव जाति निवास करती है, संचार साधनों और वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण एक दूसरे के बहुत निकट आ गई है। उन सबके व्यवहार में भी एक रूपता और पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। तेजी से विकास हो रहा है, इसी के परिणाम स्वरूप कई अच्छाइयां भी बुराइयों के रूप में काम करने लगी है। सारे मनोधर्म अब प्रायः मनोविकार के रूप में देखे जाने लगे हैं, क्योंकि उनका धार्मिक मर्यादाओं को भुलाकर दुरुपयोग हो रहा है। यह समाज के हित के लिए घातक विष बन गए हैं। प्रायः सारे संसार में ये एक से प्रचंड रूप में देखे जा सकते हैं। परंतु हमारे देश भारत में अनेकों विचारों के मध्य मेरी दृष्टि में तीन विकार अमर बेल की भांति छा से गए हैं। ये है कर्तव्य निष्ठा की कमी। जो जहाँ भी कार्यरत है अपने कर्तव्य से विमुख दिखाई देता है। सरल शब्दों में यह कामचोरी की भावना है, काम न करना और अधिक से अधिक आर्थिक लाभ लूट लेना, धन का लोभ, सब कुछ छोड़कर अधिक से अधिक मर्यादाहीन धनोपार्जन। इसी के लिए अनुचित साधन अपनाए जा रहे हैं, लांच घूस ली जाती है। जो दुखी है उनसे पैसे लेकर उनकी समस्या का हल करने की बात कर झूठे लालच में फंसाया जाता है, उन्हें लूटा जाता है। यह बीमारी आम हो गई है और हर क्षेत्र में फैली देखी जा रही है। इससे जनता त्रस्त है और बेईमान दुराचारी मस्त है। अनाचार व्यभिचार पिछले कुछ वर्षों में यह भी बढ़ता जा रहा है। जहां किसी की मनोभावना का सम्मान तो होता ही नहीं, अनादर मात्र होता है। इनके सिवाय धोखाधड़ी, लूट, गबन, असत्य व्यवहार प्रायः हर क्षेत्र में आम है। जरूरत से ज्यादा नैतिक पतन हो गया है। इन बढ़ती बुराइयों से न केवल आर्थिक हानियां होती हैं, मन का संताप होता है, बल्कि अन्य देशों की नजरों में देश की साख भी गिरती है। काम चोरी का ही परिणाम है कि देश में शिक्षा का, उत्पादकता और आचरण का स्तर गिरता दिखाई देता है और विभिन्न प्रगति के परिणामों से आशाएं पूरी नहीं हो पाती। इनको चुनौती के रूप में लेकर हमें सुधार करना जरूरी है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख श्री सी बी श्रीवास्तव का था, वाचक थे मनीष तिर्की। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर सुरेश वाडेकर का है।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नर नारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को ना पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

0: रामचरितमानस का गायन, गायक थे सुरेश वाडकर। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि सामयिकी। इसमें आज सुनिए फल बाग लगाने की तैयारी के बारे में जानकारी।
1: किसान भैयारो, फलों को लगावे की विधि के बारे में कछु सलाह देवो चाहत हैं। पौधे लगावे के लाने अनेक विधियां, जैसे वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणी, सटाकार, पंचाकार जे प्रचलित हैं। इन सभी विधियों में सबसे अच्छी, उपयुक्त और आसान विधि वर्गाकार मानी जात है। किसान भैयारो, अपने खेत में जहाँ पे गर्मी के मौसम में गड्ढा कर हैं आपने छोड़ दे होवे, कछु किसानों ने गड्ढों को मिट्टी, गोबर की सड़ी भई खाद और कीटनाशक दवाई और उर्वरकों की मात्रा मिला खो भरदई हुई है। जिन कृषकों ने ऐसो न कर पाओ होवे, तो उनके लाने हम बतावो चाहत हैं कि मौसम के साफ होते ही से बतर मिलवे पे गड्ढों को भर देवे और 10-15 दिन बाद इन भरे भये गड्ढों में पौधे लगा देवे। किसान भैया हरों को जासोई बतावो चाहत हैं कि वर्गाकार विधि में पौधे कैसे लगाए जावे। वर्गाकार रेखांकन के लाने एक आधार सीधी रेखा लेखें, 90 अंश को कोण बनात भये वर्ग बनावे। वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होवे। बढ़वे बारे बड़े पेड़ बारे फलों के लाने 8 से 10 मीटर को अंतर रखें। आम, काजू, कटहल, आंवला के लाने जा कतार और पौधे को अंतर आपस में समान होते हैं। अमरूद, नींबू, अनार, संतरा, मौसम्मी फलों के लाने 5 मीटर बाई 5 मीटर से 6 मीटर बाई 6 मीटर। करौंदा, फालसा, पपीता के लाने 2 मीटर बाई 2 मीटर से 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर को समान अंतर रखत भए वर्गाकार रेखांकन करबो उम्दा मानो गौ है और जरूरी सोई रहत है। ई के बाद भैया, हरेक कोण बिंदु जहाँ 2 भुजाएं मिलती हैं उतः पौधा के लाने गड्ढा बनाए। बड़े गड्ढों के लाने 1 मीटर लंबाई 1 मीटर की चौड़ाई और 1 मीटर की गहराई। मध्यम और झाड़ी नुमा पेड़ों के लाने 0.5 मीटर बाई 0.5 मीटर बाई 0.5 मीटर आकार के गड्ढा बनावें। गड्ढों के आकार के अनुसार भरी जावे वारी मिट्टी को 1/4 भाग गोबर की सड़ी भई खाद और कीटनाशक 50 ग्राम प्रति गड्ढा के हिसाब से मिला दो चाहिए। अब जो प्रश्न उठत है कि पौधा कैसे लगाएं, एक गड्ढों के बीचों बीच पौधा लगे, ई के लाने रस्सी को उपयोग अपन कर सकत हैं। पौधे लगावे के तुरंत बाद पानी फुहारे द्वारा सिंचाई करें। उत्तम जोई हुई है कि हल्की रिमझिम वर्षा के समय पे पौधरोपण करें तो उम्दा रहे है। गर्मी की ऋतु में गड्ढा करवो सर्वोत्तम मानो गौ है। गड्ढों को 20-25 दिना ग्रीष्म काल में खुलो छोड़ दो चाहिए। गड्ढा भरत समय कीटनाशक दीमक की रोकथाम के लाने जरूर मिला देवे। गड्ढा भरत समय पे स्फुर और पोटास बारे उर्वरक मिट्टी में मिला दो चाहिए और नत्रजन की मात्रा पौधा लगावे के 20-25 दिन बाद अपन खो दे दो चाहिए। वर्षा ना होवे की स्थिति में सिंचाई जरूर करत रहो चाहिए। जितनी ऊंचाई पे पौधा पैकेट में हतो उतई ऊंचाई तक की मिट्टी अपन खो भरने हैं और ना नेचे करने हैं, माने ने नेची रहे ने ऊंची रहे, समान ऊंचाई की रहे। और गर्मी की ऋतु में रोपण न करो चाहिए पौधों को, माने के गर्मी की ऋतु में पौधों को रोपण न करें। पौधे विश्वसनीय संस्था जैसे शासन और विश्वविद्यालय की जिन रोपणी है या नर्सरी है उतई से खरीदें। जे कछु विशेष सावधानियों के लाने हमने आप और बातें बताई, ऐसो अपन करें तो उम्दा लाभ ले सकते हैं।
0: कृषि सामयिकी में किसान भाई सुन रहे थे फल बाग लगाने की तैयारी के बारे में जानकारी। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। 9 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार, कलाकार होंगे डॉक्टर गिरीश झा और दिव्या तिवारी। 9:30 पर फिल्म संगीत। 10:05 पर वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। विश्व दर्पण 10:10 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा 10:20 पर।

ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे न्यूज हेडलाइंस से। 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युवाणी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:33 पर। 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोक संगीत 6:30 पर कलाकार होंगे देवी सिंह दाहिया। 6:45 पर सुगम संगीत में सुनिएगा अनवर हुसैन की गई चंद गजलें। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर। इसमें किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर राहुल शर्मा की भेंटवार्ता पशु चॉकलेट के बारे में। सुर्खियों में रात 8 बजे इसे भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:15 पर फिल्म संगीत। 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय। दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन रात 10:30 पर।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में, 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिस्सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नार्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोप्तः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉक्टर निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73,87,970 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। IPL इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और

0: द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella and discuss

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटिया।

0: डेवलपमेंट योजना और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में नौगांव में पारा 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय किया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्डिक क्षेत्र सतत विकास में नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को भारत के व्यापक स्तर के साथ जोड़कर भविष्य के लिए भरोसेमंद वैश्विक समाधान विकसित कर सकते हैं। श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है और भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा है। उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश और गूगल के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, उन्नत क्लाउड तकनीकों और एआई आधारित समाधानों के उपयोग पर गूगल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक चर्चा करेंगे। भोपाल में हो रही इस बैठक में मध्य प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट गवर्नेंस और तकनीकी आधारित विकास को नई दिशा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल आयोजित मध्य क्षेत्रीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में किए गए जनकल्याणकारी कार्यों और सुशासन के प्रयासों की जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में विशेष प्रयासों से सफलता प्राप्त की गई। प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित रहे ग्रामों के लिए 330 करोड़ रुपये लागत की माइक्रो डेवलपमेंट योजना लागू की गई है। अलग अलग योजनाओं के तहत सड़क, पुल, मोबाइल टावर, नई सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश आज धान और गेहूं के उत्पादन में मजबूत स्थिति में है, लेकिन दलहन और तिलहन के क्षेत्र में अभी आत्मनिर्भरता हासिल करना बाकी है। कल भुवनेश्वर में आयोजित पूर्व क्षेत्रीय खरीफ कृषि जोनल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत की कृषि को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच क्षेत्र विशेष और राज्य विशेष रोडमैप के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि
2: एक हमने चर्चा की है इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर। हमारे पास तो 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ छोटा किसान लैंड होल्डिंग का, मैं तो कम लैंड होल्डिंग में कैसे वो ज्यादा उत्पादन करे, उसकी आजीविका कैसे चले। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कई मॉडल देश में बनाए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है वो अनाज भी लगाए, लेकिन छोटा ही खेत हो तो फल भी कुछ लगाए, सब्जी भी लगाए, जिनकी रुचि है वो पशुपालन करें, मछली पालन भी करें, मधुमक्खी पालन भी करें, उसके अलग अलग मॉडल हमने तैयार किए।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बंद के आह्वान के चलते आमजनों को दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बंद के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों तथा निजी अस्पतालों में संचालित फार्मेसी खुले रहेंगे। गौरतलब है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं होने से नकली और एक्सपायरी दवाएं मरीजों तक पहुंचने का खतरा है। नीमच और आगरमालवा में औषधि विक्रेताओं द्वारा प्रतिष्ठान बंद रखे जाने की सूचना दी गई है, लेकिन जिले में आमजन और मरीजों को जरूरी दवाइयां मिल सकें इसके लिए सरकारी और निजी अस्पतालों के कुछ मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25 और 26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही वीर भारत न्यास द्वारा भोपाल में भारत भवन में 27 मई से 2 जून तक सदानीरा समागम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि उज्जैन में गंगा दशमी के अवसर पर होने वाली शिप्रा तीर्थ परिक्रमा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण आयोजन है। भारत भवन में सदानीरा समागम का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्व

महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के AI आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार यह 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। संग्रहालय के अधिकारियों के अनुसार आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया है। यह संग्रहालय का तीसरा AI आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोजशाला में कल महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। माँ वाग देवी की महाआरती, हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। पूरा परिसर में बसंत पंचमी जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की मांग है कि माँ वाग देवी की मूल प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर यहां स्थापित किया जाए। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। IPL में कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश भीषण गर्मी और तेज लू की चपेट में है और इसका असर अब जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। कल प्रदेश में तेज गर्मी और लू जैसे हालात के बीच 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों को लू लगने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चली। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की और बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कई शहरों में लू जैसे हालात बने हुए हैं और फिलहाल राहत के संकेत नहीं हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में युवा संगम जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 28 मई को शासकीय ITI झांसी रोड में किया जाएगा। सतना के शासकीय ITI कॉलेज बिरला रोड में आज 11 बजे से 2 बजे तक युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कल डिंडौरी के विकासखंड अमरपुर में ग्राम नांदा में आयोजित क्षीरधारा ग्राम योजना शिविर में पशुपालकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी गई। इंदौर में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 15,051 एक्सरे किए जा चुके हैं और TB के प्रिवेंटिव इलाज में इंदौर जिला मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। सिवनी में विगत 18 मई से जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। मैहर, अमरपाटन और रामनगर के 35 गांवों में PM जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष शिविरों में हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह आज खंडवा के ग्राम रोशनी में कृषि, मत्स्य एवं पर्यटन के समेकित मॉडल का शुभारंभ करेंगे। नीमच कलेक्टर ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मात्र स्वास्थ्य उपार्जन और ईंधन आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हरदा में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर में छात्र छात्राओं को नालसा और सालसा की विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर RTO और जिला प्रशासन की टीम ने कल बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकाल में सुगम निकास व्यवस्था की जांच के दौरान 8 बसों से 2,26,000 रुपये का जुर्माना वसूला। और झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश टुकाराम भरसट ने कल पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक में पंपों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200% तक बढ़ा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की आज गूगल की टीम के साथ उच्च स्तरीय रणनीति बैठक। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए 330 करोड़ रुपए की माइक्रो डेवलपमेंट योजना। और मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

श्रोताओं, स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। आज है 20 मई और आज एक विशेष दिन, सुमित्रा नंदन पंत की जयंती। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत, उनका जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनका नाम गोसाई दत्त था। वो गंगादत्त पंत की आठवीं संतान थे। उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़े गगन से उतरती संध्या, ये सब तो सहज रूप से काव्य का उपादान बने और निसर्ग के उपादानों का प्रतीक और बिंब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेषता रही। उनका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था। सुमित्रानंदन पंत के जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया और माता के निधन के बाद वो अपनी दादी के पास रहते थे। 7 साल की उम्र में जब वो 4थी कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। सन 1917 में पंत अपने मंझले भाई के साथ काशी आ गए और क्रेन्स कॉलेज में पढ़ने लगे। यहाँ से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। गोसाई दत्त कैसे बने सुमित्रा नंदन पंत, इसके बारे में बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत का असली नाम गोसाई दत्त पंत था। सुमित्रा नंदन को गोसाई नाम से गोस्वामी तुलसीदास की छवि दिखती थी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म अभाव में हुआ। उन्हें जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उन्हें उन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े उसके लिए उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इसका खुलासा उन्होंने आकाशवाणी में हुए साक्षात्कार में किया था। पंत की रचनाशीलता गति पकड़ती गई। सन 1918 के आसपास वो हिंदी की नवीन धारा के प्रवर्तक के रूप में पहचाने जाने लगे। 1926-27 में उनका पहला काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। कुछ समय बाद वो अपने भाई देवीदत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए। इसी दौरान वो कार्ल मार्क्स और फ्रायड की विचारधारा के प्रभाव में आए। सन 1938 में उन्होंने रूपाभ नामक मासिक पत्रिका निकाली। वीणा और पल्लव में संकलित उनके छोटे गीत उनके अनूठे सौंदर्य बोध की मिसाल हैं। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई जिनमें कविताएं, नाटक और निबंध शामिल हैं। उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में ही संकलित हैं जो 1918 से 1925 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह है। हिंदी साहित्य और सेवा के लिए उन्हें 1961 में पद्म भूषण, 1968 में ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे सम्मानों से अलंकृत किया गया। श्रोता, ये थी थोड़ी सी चर्चा सुमित्रानंदन पंत के बारे में और अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी अपने हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत सुना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, फिल्म थी प्यार ही प्यार।

0: सपाड़ी ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आज है 20 मई और एक 20 मई को एक दिवस और मनाया जाता है। जानते हैं आप क्या, 20 मई को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बी डे। विश्व में पहली बार 20 मई 2018 को मधुमक्खी दिवस मनाया गया था और तब से हर साल मनाया जा रहा है। एंटोन जानसा, जिन्हें मधुमक्खी पालन में सबसे अग्रणी माना जाता है, उनके जन्म की याद में ये दिन मनाया जाता है। ज्ञात हो कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। स्लोवेनियाई परंपरा में मधुमक्खी पालन एक ऐसी चीज है जो गहराई से निहित है और यह मधुमक्खी पालकों के मामले में अग्रणी यूरोपीय देशों में एक है। एक तरह से ये समझा जा सकता है कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का उद्देश्य उनके पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के सतत विकास में उनके योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। एक रिसर्च के अनुसार ये भी माना जाता रहा है कि मधुमक्खी 4 तक गिनती जानती है। भारत में मधुमक्खियों की 4 जातियां पाई जाती हैं, एपिस सेरना इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस डार्सेटा, एपिस ट्रेगोना। इनमें से एपिस सेरना ही एक ऐसी मधुमक्खी है जिसे पाला जा सकता है। बाकी जाति की मधुमक्खियां पेड़ों के खोखलों गुफा में सामान्यतः रहती हैं। लोगों के जीवन में मिठास बढ़ाने वाली शहद के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन वे किस तरह शहद बनाती हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो मधुमक्खियां हीटर या गर्मी पैदा करने वाली छत्ते को गर्म करने का काम करती हैं। ये जटिल सामाजिक संरचना को काबू में रखने का कार्य भी करती हैं और उनका उत्तराधिकारी और वयस्क होने पर कौन मधुमक्खी क्या काम करेगी ये भी निर्धारित करती हैं। मधुमक्खियां जिस स्थान पर अपने अंडे देती हैं, इस जगह पर उनके बच्चे, जिन्हें पुप्पे कहा जाता है, वे उस वक्त तक मोम की कोशिकाओं में लिपटे होते हैं जब तक कि वे बड़े ना हो जाएं। मधुमक्खियों से मिलने वाला शहद इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लाभदायक है। इसे एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जाना जाता है। इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज, विटामिन 6B, विटामिन सी, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है। ये सर्दी जुकाम में आराम तथा गले की खराश दूर करने के भी काम आता है। सबसे घातक घरेलू मक्खी होती है, सबसे घातक, जिसके शरीर पर 10 लाख से भी ज़्यादा कीटाणु मौजूद रहते हैं। ये भोजन को संक्रमित कर सकती है, जिसकी वजह से उल्टियां, दस्त भी लग सकते हैं। अतः भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। ये अलग मक्खी की हम बात कर रहे हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि यदि पृथ्वी से मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो इस दुनिया से 4 साल में मानव जाति खत्म हो जाएगी। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मानवीय गतिविधियां, बढ़ता प्रदूषण, औद्योगिकरण, पेड़ पौधों पर कीटनाशकों का छिड़काव आदि के दुष्प्रभावों से दुनिया भर में जो मधुमक्खियों की संख्या कम होती जा रही है, उससे हमें आगामी समय में मानव जीवन को लेकर बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर की कृषि भूमि परागण पर निर्भर करती है। तय हमें सिर्फ मानव का ही नहीं बल्कि सभी पशु पक्षियों के अस्तित्व के बारे में

जागरूक रहना चाहिए तथा लोगों को मधुमक्खियों के महत्व को समझाना और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य करना चाहिए। और श्रोताओं, अब सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओ, अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन, फिल्म थी जल महल।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लीजिए, आप सुनिए शैलेंद्र सिंह का गाया ये गीत। गीतकार हैं गुलशन बाबरा, संगीतकार राहुल देव बर्मन, फिल्म है खेल खेल।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना

0: पहली जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
5: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
8: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
9: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
10: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।

0: रिपोर्ट।
1: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation.

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में सुनिए ये गीत। फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। ये गीत अभी आपने जो अभिजीत की आवाज़ में सुना, इसे हमने लिया था फिल्म यस बॉस से।

प्यासा सावन, इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज़ में। गीत लिखा था संतोष आनंद ने, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब सुनिए मुकेश का गाया गीत, फिल्म है अनाड़ी, शैलेंद्र की शब्द रचना, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 8:58 होने वाले हैं। न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से हम रिले कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत नॉर्डिक के बीच व्यापार में पिछले एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक में जो मंत्री भोपाल में हैं वे फिजिकली शामिल होंगे और जो भोपाल से बाहर हैं वे मंत्री वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के भीमपुर में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत जांच जागरूकता एवं जन भागीदारी महाअभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सिकल सेल एवं थैलेसीमिया जांच मशीन का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और गूगल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच आज भोपाल में बैठक होगी। इस दौरान दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, उन्नत क्लाउड तकनीकों और एआई आधारित समाधानों के उपयोग पर उच्च स्तरीय रणनीतिक चर्चा की जाएगी। प्रदेश में आज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बंद के आह्वान के चलते आमजनों को दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बंद के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र, शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों तथा निजी अस्पतालों में संचालित फार्मेसी खुले रहेंगे। और आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया, जिससे राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। आज कोलकाता में शाम 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। कलाकार हैं डॉक्टर गिरीश झा और दिव्या तिवारी। पहले सुनिए डॉक्टर गिरीश झा के गाए लोकगीत। पहले सुनिए ये बघेली होली गीत।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार अब समाप्त होता है। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा गीत, संगीतकार हैं जीत प्रीतम, फिल्म है मेरे यार की शादी है।

मिस्टर इंडिया, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब सुनिए सावन कुमार का लिखा गीत, संगीतकार है महेश किशोर, आवाज़ लता मंगेशकर और विपिन सचदेवा की है, फिल्म का नाम सनम बेवफा।

वक्त की आवाज़। अब सुनिए इस फिल्म का गीत आशा भोसले, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार भप्पी लहरी।

अब सुनिए अलका याग्निक का गाया गीत, फिल्म है राज, बोल समीर के हैं, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव पर आकाशवाणी का, ये जबलपुर केंद्र है, 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से हम रिले कर रहे हैं।
1: भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर जिले में हमारी जनगणना हमारा विकास के संदेश के साथ नागरिकों को जागरूक करने, जन सहभागिता सुनिश्चित कराने और जनगणना 2027 को सफल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में जनगणना प्रचार रथ के माध्यम से जिले में नागरिकों को जनगणना के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। प्रचार रथ नागरिकों को वीडियो फिल्म एवं जन जागरूकता संदेशों के जरिए जनगणना प्रक्रिया की जानकारी दे रहा है। बुरहानपुर में प्रस्तावित निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों और निवेशकों से बीते दिनों चर्चा की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास के नए क्लस्टर बनाने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। अधिकारियों ने तैयारियों का प्रेजेंटेशन देकर भरोसा जताया और उद्योग जगत से सुझाव आमंत्रित किए, जिससे साझेदारी पर आधारित विकास रणनीति पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को बुरहानपुर जिले के जनप्रतिनिधि और आमजन अमल में लाए हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सुबह बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से महानगरी एक्सप्रेस पकड़कर खंडवा के लिए रवाना हुए। गांव बोहरडा से स्टेशन तक ईवी कार से पहुंचे और फिर रेल यात्रा की। उन्होंने निजी गाड़ी छोड़कर सार्वजनिक यातायात अपनाकर ईंधन बचत का संदेश दिया है। बुरहानपुर जिले की खकनार पुलिस ने यातायात सुरक्षा अभियान के तहत थाना प्रभारी अभिषेक जाधव और उनकी टीम ने शादी समारोह में पहुंचकर दुल्हा दुल्हन को हेलमेट भेंट करने का अभियान शुरू किया। ऐसे ही क्षेत्र की दर्जनों शादियों में पहुंचकर पुलिस बारातियों को यातायात सुरक्षा का संकल्प दिला रही है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी डैम रोमांच और रेस्क्यू की असली पाठशाला बन गया है। आपदा प्रबंधन के 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन दूसरे सत्र में SDERF, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के 32 जवानों ने पानी के बीच जीवन बचाने की बारीकियां सीखी। तेज धूप और लहरों के बीच जवानों ने तैराकी, बोट संचालन, डूबते व्यक्ति तक फुर्ती से पहुंचने और सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीक का अभ्यास किया। दूध की धार बढ़ाने के उद्देश्य से क्षीरधारा योजना के तहत पशुपालन विभाग की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत टीकाकरण, नस्ल सुधार और आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर बुरहानपुर जिले में पशुपालन को रफ्तार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी क्षीरधारा योजना ने जोर पकड़ लिया है। जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पशुपालन विभाग की टीमें अब गांव-गांव दस्तक दे रही हैं। वहीं बांझपन से जूझ रहे पशुओं के लिए विशेष शिविर, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान से बेहतर नस्ल तैयार करने पर खास फोकस किया जा रहा है।

बुरहानपुर का करीब 195 वर्ष पुराना स्वामी नारायण मंदिर इन दिनों पुरुषोत्तम मास में भक्ति से सराबोर है। यहां रोजाना प्रभु लक्ष्मी नारायण देव का सैकड़ों लीटर दूध, दही, केसर, पंचामृत और पवित्र जल से अभिषेक हो रहा है। मान्यता है कि यह सन 1882 से यह परंपरा बिना रुके चली आ रही है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए बुरहानपुर के लालबाग रेलवे स्टेशन पर महिलाओं द्वारा प्रतिदिन रेल यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की समाजसेवी महिलाएं रोजाना समूह बनाकर स्टेशन पहुंचती हैं और ट्रेनों में सवार यात्रियों को ठंडा पानी पिलाकर सुकून का एहसास कराती हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के चयनित जनजाति बाहुल्य 116 ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत चयनित ग्रामों के आदि सेवा केंद्रों पर विशेष संतृप्ति शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में शासन की विभिन्न योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को शासकीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से गांव-गांव कृषि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम दवाटिया में आयोजित कृषि चौपाल में किसानों को शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जन जागृति संस्था बुरहानपुर द्वारा नर्सेस डे के उपलक्ष्य में बुरहानपुर क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों में कार्यरत महिला एवं पुरुष नर्सेस का सम्मान समारोह जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. LDS फुनकवाल, जन जागृति संस्था के संरक्षक एवं संस्थापक महेंद्र जैन और संस्था अध्यक्ष डॉ. किरण सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने TL बैठक में बीते दिनों निर्देश दिए कि नॉन अटेंडेड शिकायतें पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने, जमीनी स्तर पर समस्याओं की जानकारी लेने और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग को अवैध उत्खनन तथा परिवहन के विरुद्ध संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। अब सुनिए गौरव गान की 150वीं सदी, वंदे मातरम।

श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की स्वाधीनता संग्राम की प्राणवायु और माँ भारती की वंदना का अमर मंत्र है। वंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित ये गौरवगान 150 वर्षों से भारतीयों के हृदय में देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र प्रेम की अखंड ज्योति जला रहा है। वंदे मातरम की रचना महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1870 के दशक में की गई थी। 1882 में उनके प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को शामिल किया गया। इस गीत में संस्कृत और बांग्ला का ऐसा अद्भुत संगम है जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और माता के स्वरूप का गुणगान करता है। ये वो गीत था जिसने देश के कोने कोने में सोई हुए राष्ट्रीय चेतना को जगाया। सन 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान ये गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया था। इस नारे और गीत ने आम जनता, किसानों और युवाओं को अंग्रेजों के दमन के खिलाफ एकजुट किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को जनगण मन के समकक्ष राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया। हालांकि विवादों और कुछ आपत्तियों के चलते इसके शुरुआती दो पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था जो सीधे मातृभूमि की स्तुति करते हैं। आज अपनी रचना के 150 वर्षों से अधिक समय बाद वंदे मातरम की प्रासंगिकता और ऊर्जा पहले जैसी ही है।

इसे विभिन्न सरकारी आयोजनों और राष्ट्रीय पर्वों पर पूरे सम्मान के साथ गाया जाता है। ये मंत्र आज भी भारत की सांस्कृतिक एकता और स्वतंत्रता के संघर्ष की अमर स्मृति के रूप में हर भारतीय के कंठ में गूंजता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली बैठक को लेकर बेहद उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात्रि भोज पर मिलने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने

0: इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहन स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: इंडिया इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज।
1: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री रूबियो कोलकाता, नई दिल्ली, आगरा और जयपुर जाएंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया है कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अमरीका के विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड समूह में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की 2 दिन की यात्रा पर कल रात पेइचिंग पहुंचे। इस दौरान श्री पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ वार्ता करेंगे। श्री पुतिन की ये यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा संपन्न होने के 1 सप्ताह से भी कम समय में हो रही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री पुतिन की ये यात्रा वर्ष 2001 में हस्ताक्षरित चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। नाइजीरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभियान में इस्लामिक स्टेट के 175 आतंकवादी मारे गए हैं। नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता समाइल उबा ने कल कहा कि अभियान के दौरान संयुक्त हमलों में चौकियों, हथियार डिपो, रसद केंद्रों, सैन्य उपकरणों और आतंकी गतिविधियों को मदद देने वाले वित्तीय नेटवर्क के मुख्यालयों को नष्ट किया गया। कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री रोजर काम्बा ने ये जानकारी दी। कांगो के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार देश में 543 संदिग्ध मामले और 32 पुष्ट संक्रमण दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में 2 मामलों की जानकारी मिली है। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायोग के एक सहायक सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिकारी कल सुबह खुलशी इलाके में दूतावास परिसर में मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 35 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई है। वे हरियाणा के रहने वाले थे और चट्टोग्राम स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत थे। दूतावास कर्मियों ने नरेंद्र के कमरे से कोई जवाब न मिलने पर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चट्टोग्राम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया है। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सूडान के मध्य क्षेत्र में एक व्यस्त बाजार पर ड्रोन हमले में 28 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। पश्चिम कोदोफान प्रांत के घुबैश शहर के बाजार को उस समय निशाना बनाया गया जब वहां

0: बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। समूह ने हमले के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है, हालांकि सूडानी सेना ने इन आरोपों से इनकार किया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है। इनमें जेमिनी स्पार्क नाम का एक नया पर्सनल एआई एजेंट भी शामिल है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: उसी 1.5 से 2 लीटर मात्रा, ये मैं आपको रासायनिक तत्व की मात्रा।
2: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सरंगा। श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा गीतों और खतों को लेकर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों के गाए इस गीत से। इसे लिया है हमने फिल्म सारंगा से। शब्द रचना भरत व्यास की है, संगीतकार है सरदार मलिक। अनुरोध आप सबका, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा शेरे, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन।

मुकेश की आवाज़ में सुनिए। इंदिवर का लिखा गीत, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा देवरी से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, दीपक उन्नति, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा।

अब सुनिए फिल्म संगम का ये गीत, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जय किशन, आवाज मुकेश की है, पसंद आप सबकी। बरगीनगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम, शुभांग, सृष्टि, बिलहरी बड़खीरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, शेख जमील, मुनीर मंसूरी, लालू गोलू, सोनू नीलेश, टिंकू लोधी, बिसरता आदिवासी, गड़िया मोजेस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना, पूजा आरती और सुनीता देवी।

अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म है बंदिनी, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार SD बर्मन। सुनना चाहते हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, बीरसिंहपुर पाली उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, अरुण विश्वकर्मा, शुभम विश्वकर्मा, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी लक्की रोली, श्वेता और परू।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। अनुरोध हमारे श्रोताओं का है वीर सिंहपुर पाली उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश, अरुण विश्वकर्मा, शुभम विश्वकर्मा, भाटापारा दत्तरंगी से द्वारिका वर्मा, किशोर कुमार, दीपक जावेदर वर्मा, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज सुजला ठाकुर, ज्योति और रियांश ठाकुर, गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मिक्का विरक।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुनिए फिल्म है तलाश। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत एसडी बर्मन का। सुनना चाहते हैं आप सब खोआ मंडी जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, महेंद्र जैन, अरुण चौरसिया, प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, राजेश अंजलि,

संदीप माधुरी पिंटू जयश्री खंडाले, कुंदानगर खरगोन से ध्रुवा सोनावड़े, सुनीता खुशी, प्रियांश आशीष, पूनम कृष्णा, शुभम सोनावड़े, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल धंजे, विशाल धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुनिए। फिल्म है महुआ, बोल कमर जलालाबादी के हैं, धुन बनाई है सोनी कोमी ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र वृजकांत सारथी, पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या प्रियंका, बीटी वाडोदे, चंद्रप्रभा वाडोदे, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल, गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय, जबलपुर कैंट से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही और सृष्टि राही, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीतकार हैं मदन मोहन जयदेव। सुनना चाहते हैं परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन, ज़मीर खान। खंडवा से अब्दुल गफ्फार खान डाबर, खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हादिया, आसमा, सालिया, शुएब, मुस्ताबा खान, रऊफ़ शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर।

श्रोतो, इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा अब समाप्त होता है। मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:58 होने वाले हैं। न्यूज हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: पांचवें और अंतिम चरण में इटली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। प्रदेश में अभी तक 12,30,426 किसानों से 90,08,469 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को 18,707 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। सीबीएसई ने 12वीं की स्कैन आंसर कॉपी देखने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। अब ये तारीख 23 मई कर दी गई है। यूनिफाइड सिविल कोड यूसीसी को लेकर 23 मई को इंदौर और उज्जैन में बैठकें होंगी। यूसीसी के लिए रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है। इनमें जेमिनी स्पार्क नाम का नया पर्सनल एआई एजेंट भी शामिल है, जो यूजर्स की तरफ से खुद ब खुद काम करके उनकी मदद करेगा। मौसम विभाग ने दतिया, भिंड, रीवा, सतना, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत कई जिलों में तेज गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 25 मई से 6 जून तक गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: नमस्कार, फोन करें, गीत सुने इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, जीवन कभी समुद्र की लहरों सा ऊंचा उठता है तो कभी चुपचाप किनारों से टकराकर बिखर जाता है। कभी समय की धूल मन के आईने पर जम जाती है तो कभी कोई मधुर सी धुन उसे फिर से चमका देती है। संगीत वो बारिश है जो भीतर सूखती संवेदनाओं पर धीरे धीरे उतरती है और फिर सब कुछ हरा हो जाता है। संगीत वो दीपक है जो थके हुए मन के अंधेरों में भी उजाला रख देता है। संगीत वो खुशबू है जो बीते हुए सुनहरे पलों को फिर से जिंदा कर जाता है, हमारे जीवन को महका जाता है। तो आइए सुरों की इसी रेशमी छाँव में कुछ पल गुजारते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम है फोन करें, गीत सुनें। आपकी पसंद, आपकी फरमाइशें, आपकी चाहतें गुनगुनाता एक हसीन सा सफर। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं राजीव अग्रवाल बोल रहा हूँ, राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से। दीदी
2: राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, कैसे हैं?
3: बहुत धन्यवाद दीदी, बढ़िया हूँ मैं। यहाँ पर अभी कार्यक्रम चल रहा है, मेरे पास दो रेडियो भी, 4-5 रेडियो रखता हूँ मैं, जैसे अलग अच्छा। अलग स्टेशन सुनता हूँ, विविध भारती है, भोपाल है, इंदौर है, सभी। जैसे करीब 40-45 वर्ष हो चुके हैं मुझे।
2: क्या बात है, तो आप हमारे पुराने और नियमित श्रोता हैं। तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं राजू जी?
3: कार्यक्रम ज्यादातर हम ये फरमाइश कार्यक्रम से ज्यादा हम मतलब वो रहते हैं, छुट्टियों के फोन इन कार्यक्रम।
2: जी जी जी। और अब हम जानना चाहते हैं कि गीत कौन सा सुनेंगे आज?
3: आज गीत अमर अकबर इन्फोनी पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, अनहोनी को होनी करके, होनी को अनहोनी, किशोर दास, एलन सिंह और महेंद्र कपूर की आवाज में है ये गीत।
2: क्या बात है।
3: आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बनाया हुआ गीत है। मोहन देसाई साहब की।
2: ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सारे क्रेडिट्स याद हैं। अक्सर लोग गायक कलाकारों को तो याद रखते हैं, लेकिन जो गीतकार और संगीतकार हैं उनको लोग याद नहीं रखते।
3: उनको खजाना ही दे रखा है ना।
2: जी जी जी। चलिए राजू जी, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत। यूं ही आकाशवाणी से अपना प्रेम बनाकर रखिए। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का, इंदौर से। जी,
0: अरे वाह, हसीना जी, बहुत बहुत
1: आपका
0: स्वागत
1: भी
0: है
1: बहुत,
0: आपका।
1: जी आपसे बात करने के लिए बहुत दिल बेताब था मैडम।
0: हमारा भी मन बेचैन रहता है अपने श्रोताओं से बात करने के लिए। कैसी हैं आप?
1: जी, अच्छे हैं आप, कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी।

0: अच्छा ही रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।
0: जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा मैडम, क्योंकि आप लोगों से तो हम लोग जुड़े हुए हैं।
1: जी। तो आज कौन सा गीत सुनेंगी हसीना जी?
0: इम्तिहान फिल्म का नाम और गाने के बोल हैं। इस

0: छोड़ जाऊंगा, ये सुना दीजिए।
1: वाह वाह वाह, सुरीली सी फरमाइश आपने की है। संगीत यूं ही आपकी ज़िंदगी में बना रहे और आपको खुश करता रहे, आपको निश्चिंत करता रहे, आपको स्वस्थ करता रहे, ये कामना है हमारी हसीना जी।
0: जी जी जी
1: बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी मैं जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित एवं करीब 16 साल पुराना श्रोता अमित तिवारी बोल रहा हूँ।
0: अमित तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम इस कार्यक्रम में।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता सिंह बात कर रही है शायद?
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी
1: जी जी, आपसे बात करके जी मान के चलिए कि हमारा सौभाग्य था जी जो आपसे आज हमारी बात काफी समय के बाद बात हो रही है आपसे हमारी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया है, हमें बहुत खुशी हो रही है। अमित जी, आपने बताया कि आप 16 साल पुराने श्रोता हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको कौन कौन से कार्यक्रम विशेष रूप से आपको पसंद है?
1: जी जी, आपके यहाँ से ग्राम सभा कार्यक्रम हो, युगवाणी कार्यक्रम हो, और जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम आता है वो भी, और एक मैम बहुत समय पहले एक आता था गुरुवार को मेरे ख्याल से, जिसका नाम था बात पते की लात पते की, जो कार्यक्रम इस पर चलता था, बहुत अच्छा लगता था। शुक्रवार को हेलो ग्राम सभा भी कार्यक्रम जाता था 7:30 के करीब को, ये मान के चलिए कि उसी समय से सुन रहा।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ध्यान से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत से कार्यक्रमों का आपने नाम बताया।
1: कार्यक्रम और जाता था आपके यहाँ से हरियाली और खुशियाली, संडे को जाता था जी, हमारे सुभाष सक्सेना जी जिसकी प्रस्तुति देते थे।
0: जी जी जी, तो आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। अमित जी, आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जी जी, मुझे ही बहुत अच्छा लगा मैम, आप सुनवा दीजिए। फिल्म का नाम रहेगा मुजरिम, और इसमें जो है मोहम्मद अजीज साहब की बेहतरीन आवाज है, गीत के बोल रहेंगे। मुजरिम ना कहना मेरे लोगो, ए मुजरिम तो सारा जमाना है।
0: बहुत ही सुंदर, आपने गुनगुनाकर अपनी फरमाइश बताई।
1: जी हमारे अनु भट्टाचार्य जी हैं और प्रेमदास बाबा जी, इन दो लोगों के लिए पुराने श्रोता हैं, यह गीत देरी कर रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमें फोन किया, आप तक भेजते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।
1: ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम है ये। हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
1: सोनू दंदवा बोल रहे हैं मैडम।
0: सोनू
1: आप तो
0: जी
1: पुराने श्रोता है मैडम, कई बार फोन लगा चुका हूँ आपके।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला दमो से बोल रहा हूँ, ग्राम पटेरिया।
0: तो सोनू जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम।
0: क्या
1: गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री है तापमान यहाँ का।
0: बहुत ज्यादा गर्मी है इस साल, तो क्या उपाय करते हैं आप? क्या उपाय करते हैं बचाव के लिए?
1: बचाव के लिए मैडम उपाय तो क्या है, ये पानी यानी पीते रहते हैं और ज्यादा ज्यादा छाए में रहते हैं, धूप में निकलते नहीं है, घर पे ही रहते हैं।
0: बहुत तेज गर्मी है, तो इस
1: हाँ
0: गर्मी
1: मैडम,
0: में कुछ सुकून जो मिलता है वो संगीत से मिलता है।
1: यही अपना रेडियो सुनते रहते हैं,
0: जी
1: रेडियो है DTH के माध्यम
0: जी
1: से।
0: जी जी कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: लावारिस फिल्म का
0: गीत के बोल बताइए।
1: काहे पैसे पे इतना गुरूर किए हैं।
0: अच्छा, तो चलिए आपकी फरमाइश का गीत आप तक भेजते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? राकेश वर्मा बोल रहा है, बसाई दरवाजा से, छतरपुर से।
0: राकेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बढ़िया हैं दीदी जी। आपके प्रोग्राम मध्य प्रदेश के 11 बजे से मतलब सुनते हैं और 3 बजे तक तो आपका कार्यक्रम चलता ही है।
0: जी जी जी।
1: और बहुत पुराने श्रोता हैं अपन मध्य प्रदेश भोपाल के।
0: अच्छा, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी धर्मवीर का सुनेंगे साहब।
0: गीत के बोल बताइए।
1: सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी।
0: वाह वाह वाह।
1: न टूटे धर्मवीर
0: की जोड़ी। बिल्कुल।
1: तो क्या है कि हम जो है मध्य प्रदेश से दोस्ती बनाए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में और हमारे जो मित्र हैं उनका नाम ले सकते हैं क्या?
0: जी जी जी।
1: कल्पा सतना से हैं चांद मोहम्मद खान और बांदा से हैं दिनकर जी।
0: तो चलिए, आपकी जो ये धर्मवीर की जोड़ी है ये तो बनी ही रहे। हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि आकाश मध्य प्रदेश और आपकी जो जोड़ी है वो भी धर्मवीर की जोड़ी है और ये भी सलामत रहे। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी। सात अजूबे

0: हमारे श्रोता सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं विजय पांडे, थाना पचपड़वा, जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे कॉल को तस्लीम किए। मैं दो लाइन सुनाना चाहूँगा।
0: जी जी।
1: पेड़ से फूल लाखों गिरते हैं, उठाता है कोई कोई, मोहब्बत तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई।
0: क्या बात है।
1: आदर काबिले अदब मोहतरमा सुनीता साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब, नमस्कार।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। विजय पांडे जी, आपने अपने अंदाज में इस कार्यक्रम में प्रवेश किया है, बहुत ही सुंदर अंदाज आपका, बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: इसी पर मैं कुछ कहना चाहूँगा।
0: हाँ जी।
1: कहा गया है कि मोहब्बत एक ऐसा फूल है जिसे कोई एक बार सूंघ लेता है तो जिंदगी भर उसकी खुशबू को नहीं भूलता।
0: बिल्कुल।
1: मोहब्बत में इतनी ताकत है कि सुनसान रास्तों और वीरान इलाकों को भी आबाद कर सकती है।
0: क्या
1: मोहब्बत वो पाक लफ्ज है, कुदरत ने शायद इसीलिए मोहब्बत में इतनी मिठास रखी है कि दुश्मन को भी आसानी से खत्म किया जा सके। मोहब्बत इंसान को इंसानियत का तरीका बताती है।
0: क्या बात।
1: मोहब्बत चाहे किसी से भी हो, जज्बात मोहब्बत नेक होना चाहिए। मोहब्बत माँ बाप, बहन भाइयों, वतन, दरख्तों, यहाँ तक कि एक पहाड़ से उखड़े हुए पत्थर से भी हो सकती है। कितने बदनसीब हैं वो लोग जो मोहब्बत जैसे जज्बे को बदनाम करते हैं।
0: वाह, क्या बात है विजय पांडे जी, आपने बहुत खूबसूरत विचार रखे। और वास्तव में प्रेम जो है वो इस संसार की हर समस्या का समाधान है। देखिए, आज युद्ध के मुहाने पर संसार खड़ा है, ऐसे समय में मोहब्बत का ये पैगाम बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत ही शुक्रिया हम अदा करते हैं आपका, बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे विचार भी रखे। गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है प्रेम रोग
0: जी,
1: और गीत के बोल है मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ।
0: वाह, तो चलिए आपकी फरमाइश का गीत आप तक भेजते हैं। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: जी। सुनीता मैम जी को नमस्कार। मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ।
0: अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: किस कोर्ट से बोल रहा हूँ? वैसे हूँ श्रीनगर जिला महोबा का जी।
0: अच्छा, इस वक्त चित्रकूट में हैं। कैसे हैं, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: घूम रहे हैं किस कोर्ट में?
0: इतनी गर्मी
1: शुरुआत
0: में,
1: पर है
0: इतनी गर्मी में।
1: जी, थोड़ा है, इमरजेंसी थी तो गए
0: अच्छा, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि धूप बहुत तेज है ना, गर्मी
1: जी।
0: बहुत ज़्यादा है, तो ख्याल रखिएगा अपना। और
1: जी
0: बताइए कि आज
1: धन्यवाद
0: फरमाइश क्या है आपकी?
1: जी। फिल्म का नाम रहेगा ये रास्ते हैं प्यार के।
0: गीत के बोल।
1: मेरा दिल था एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा, किसी
0: मेरा दिल था
1: की
0: एक
1: देख जी।
0: खाली कमरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा अरविंद जी कि आपने फ़ोन किया चित्रकूट से। आपका काम
1: जी
0: सफल हो, ये हमारी कामना है आपके लिए। और आप
1: बहुत
0: तक
1: दिनों
0: भी
1: बाद आपसे बात हुई है मेरी
0: जी, आप तक
1: जी।
0: भेजते हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया।
1: जी आपका भी धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
1: जसराम यादव।
0: कहाँ से बोल रहे हैं जसराम जी?
1: जोराई से।
0: जोराई, ये कहाँ पड़ता है?
1: जिला शिवपुरी।
0: शिवपुरी, कैसे हैं? जी जी, कैसे हैं?
1: हम बढ़िया मैडम।
0: और याद किया आपने आकाशवाणी मध्य प्रदेश को तो आकाशवाणी की याद किस तरह से बनी रहती है?

0: आकाशवाणी जी आज तो बनी रहती है मैडम, क्या इसमें अच्छे अच्छे गाने मिलते हैं सुनने के लिए, अच्छी बातें मिलती हैं सुनने के लिए।
1: तो इन बातों का आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है कभी?
0: हाँ हाँ मैडम।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप आकाशवाणी सुनते हैं और जो बातें आप तक पहुंचती हैं उन्हें स्वीकार भी करते हैं, अपनाते भी हैं और उनका प्रभाव भी अच्छा होता है।
0: पहले क्या रेडियो सुनते थे, अब मोबाइल पर सुनते हैं मैडम।
1: हाँ, माध्यम कुछ भी हो सकता है लेकिन बातें पहुंचती हैं और असर करती हैं, ये बड़ी बात है। कौन सा गीत सुनवा दें आज?
0: दिल वाले पिक्चर का
1: गीत के बोल बताइए।
0: जीता हूँ जिसके लिए, जिसके लिए मत आता, एक ऐसी भी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था।
1: अच्छा, तो चलिए ये गीत आप तक भेजते हैं जसराम जी। इसी तरह आकाशवाणी के साथ अपना प्रेम बनाकर रखिए। आज आपने फोन किया
0: मैडम, दोस्तों का नाम लेना चाहता मैडम। हमारे दोस्त हैं मनपुरा के मंची, मनोज नामदेव, मंची नामदेव, अर्जुन जाटव, श्याम बरन जाटव।
1: इन सारे दोस्तों के साथ मिलकर आप सुनना चाहते हैं दिलवाले फिल्म का गीत?
0: हाँ मैडम।
1: तो चलिए आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं और आप सभी दोस्त मिलकर इसका आनंद लीजिए। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। नाम बताइए।
1: मैं निखिलेश अहरवार, ग्राम चीखली, जिला रायसेन, तहसील उदयपुरा।
0: मिथिलेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कैसे हैं आप?
1: मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आज आपकी पसंद का कोई भी अच्छा सा गीत सुनवा दीजिए।
0: अरे वाह, हमारी पसंद का गीत। देखिए ये भी बड़ी बात होती है कि जिंदगी में इंसान हर जगह अपनी पसंद चाहता है ना, चाहे कपड़े हों, खाना हो, दोस्ती हो, फिल्म देखना हो, हर जगह अपनी पसंद हम चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है,
1: जैसी है कि कुछ आपकी पसंद का भी हो, कुछ हमारी पसंद का, सब मिला जुला चलता रहता है। अच्छा,
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: तो ये जो मिला जुलापन है ये जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो चलिए मिथिलेश जी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी।
1: हुई मुझे को भी।
0: हाँ जी, बहुत धन्यवाद। भेजते हैं अपनी पसंद का गीत आपके लिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

दोस्तों, संगीत की ये महफिल अब यहीं थमती है, लेकिन सुरों की ये नर्म रोशनी आपके मन में यूं ही बनी रहे। जब भी जीवन की राहें आपको थकाने लगें, जब भी समय की धूप कुछ ज्यादा तीखी लगे, तो किसी गीत की छाओं में कुछ पल बैठ जाइए, क्योंकि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, मरहम भी है। वो मन को फिर से जिला देता है। तो संगीत के इसी मधुर एहसास के साथ अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। फिर मिलेंगे नई धुनों, नई फरमाइशों के साथ, नए रंगों से सजी एक खूबसूरत महफिल में। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पूरी कर पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर में समर इंटर्नशिप कार्यक्रम 25 मई से 29 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें देश भर के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। ग्राम रोजगार सहायकों का महापर्व और राज्य स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन आज दोपहर राजधानी भोपाल

में होगा। महासम्मेलन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25 और 26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के बाबा काल भैरव मंदिर प्रशासन के अनुसार अब श्रद्धालु 500 रुपए का शुल्क देकर सामान्य कतार से अलग गर्भगृह तक पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिन प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं, वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म अजनबी से, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के हैं, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन। और इस गीत के लिए फरमाइश अमरावती महाराष्ट्र से आई है। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, शाहिद। अगले श्रोता फ्रेंसी गांव से हैं, राजकुमार, सरजीत, प्रमोद, राजू, बबीता, सुभाष और डब्बू। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना दिल

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म हम आपके हैं कौन। गीतकार देव कोहली, संगीतकार राम लक्ष्मण। श्रोता, जिन्होंने फरमाइश हमें की है वो पंजाब से हैं, रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। अगले श्रोता सिंहपुर बड़ा से हैं, राजेश, संगीता भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सोल्जर से। गीत को सुरों से सजाया अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक। इस गीत के लिए फरमाइश हमें औरंगाबाद से आई है। श्रोता हैं राजेश, शीतल, राजदीप और राशि। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं, संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म ज्वेल थीव से। इस गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार ने, गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार एस डी बर्मन। फरमाइश हमें आई है जयराज प्लॉट राजकोट से, श्रोता है मधुसूदन, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज। अगले श्रोता नेपाल पैलेस सागर से हैं, तिलक, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म फिजा से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है पाकुड़ झारखंड से। श्रोता हैं उत्तम कुमार, श्वेता, किशु और ताशु। अगले श्रोता पटियाला से हैं मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आपकी पहचान हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र का सातवां भाग।

0: नमस्कार श्रोतागण, पंचतंत्र के इस महासमुद्र में कई सारी छोटी छोटी कहानियां हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं पंचतंत्र का द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति। इसे पंडित विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों को कुछ यूं सुनाया। असाधना अपि प्रजा बुद्धिमंतो बहुश्रुताः।
1: असाधना अपि प्रजा बुद्धिमंतो बहुश्रुताः। साधयन्त्याशु कार्याणि काकाकुमृग कूर्मवत्। प्रिय वत्सगण, विद्वान बहुश्रुत एवं बुद्धिमान साधनों के अभाव में भी अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। जैसे कौवे, चूहे, हिरण और कछुए ने मिलकर अपने कार्यों को सिद्ध कर लिया। लो सुनो, दक्षिण के किसी राज्य में एक विशाल सा वृक्ष था जिसके फलों को पक्षी मुक्त रूप से खाया करते थे। उसके कोटर में अनेक कीट निवास करते थे। दूर दूर से आने वाले पथिक उस वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम किया करते थे। उसी वृक्ष की एक शाखा पर लघुपतनक नाम का एक कौवा निवास करता था। एक बार वो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था।
2: दिन चढ़ाया, अभी तक एक दाना भी नहीं जुटा पाया। भूख के कारण दशा दयनीय हो रही है। अरे अरे, ये क्रूर ऊर्ध्वकेश यम के आकार का कौन मनुष्य इधर आ रहा है? ये तो बहेलिया है। ये दुष्ट अवश्य ही मेरे वट वृक्ष की ओर आ रहा है। हे प्रभु, ये मेरे साथियों को जाल में फंसा लेगा। मैं शीघ्र जाकर उन्हें सावधान करता हूं। मित्रों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। एक दुष्ट बहेलिया अपने हाथ में जाल एवं चावल के दानों को लेकर इधर आ रहा है। तुम लोग

0: उस पर विश्वास ना करना। चावल के दानों को विषमय जानकर उस पर दृष्टिपात मत करना।
1: लघु पत्नक पक्षियों को चेतावनी दे ही रहा था कि बहेलिया उसी वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया, फिर जाल फैला कर चावल के दानों को बिखेर दिया और चुपचाप बैठ गया। लघु पत्नक के मना करने के कारण पक्षियों में से कोई भी नहीं गया। परंतु इसी बीच चित्रग्रीव नाम का एक कपोतराज अपने साथियों सहित इधर उधर घूमता हुआ चावल के दानों को देखने लगा।
2: हे प्रभु, कहीं ये जाल में न फंस जाए।
0: भाई कपोतराज वहां ना जाए, उधर जाल बिछा है। अरे रे, अरे अरे, ये तो सुन ही नहीं रहे। अरे भाई सुनिए, ओफो, वो सब तो जाल में फंस ही गए। दुष्ट बहेलिया कहीं का।
3: मेरे कपोत वृंद, बहेलिये के आगमन से आप सब डरे नहीं। विपदा के समय भी हमें अपनी बुद्धि एवं साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम लोग आपस में मिलकर इस जाल को लेकर उड़ चलें, तो हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सबकी मृत्यु निश्चित है। चलो
4: हम सब इस जाल को ले उड़ते हैं।
0: आश्चर्य, महाआश्चर्य, पारस्परिक संगठन से सब कुछ हो सकता है। अरे देखो तो, वो मूर्ख व्याध कैसे पीछे पीछे दौड़ रहा है। चलो मैं भी चलकर देखता हूं कि ये कहां जा रहे हैं।
3: मित्रगण, वो बहेलिया तो थककर लौट गया। अब इस जाल को महिला रौप्य नगर के ईशान कोण की ओर ले चलते हैं। वहां हिरण्यक नाम का एक चूहा मेरा मित्र है, वो हमें जाल से मुक्त करा देगा। चलो। यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर हिरण्यक का विवरण है। मित्र हिरण्यक, मुझ पर बड़ी विपत्ति की स्थिति आ गई है।
5: मित्र हिरण्यक,
6: ये आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? आपके आगमन का कारण एवं विपदा की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कहें तो जरा।
3: मित्र, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र कपोतों का राजा चित्रग्रीव हूँ। शीघ्र ही विवरण से बाहर आओ।
6: हे तात, सूर्योदय, पान, रामायण तथा महाभारत की कथा, प्रिय स्त्री तथा अच्छे मित्र हर दिन नई वस्तुओं के समान सुखकारक होते हैं। जिसके घर प्रतिदिन स्नेही मित्र आते हैं, उन मित्रों को देखकर जो सुख प्राप्त होता है वो अन्य किसी वस्तु को देखने से नहीं होता। परंतु मित्र, आपकी दशा कैसे हुई?
3: अब अधिक कुछ न पूछो मित्र, अपने लालच के कारण ही हमने इस बंधन को पाया है। अब विलंब ना करो, शीघ्र ही हमारे पाश को काट दो।
6: ठीक है, इधर आ जाओ मित्र, मैं अब तुम्हारे पाश काटना शुरू करता हूँ।
3: नहीं हिरण्यक भाई, पहले मेरे अनुचरों को पाश मुक्त करो, उसके पश्चात मुझे।
6: महाशय, ये आपने उचित नहीं कहा, क्योंकि स्वामी के बाद ही भृत्यों का स्थान आता है।
3: भद्र, ऐसी बात ना कहिए, ये सभी मेरे आश्रित हैं। ये अपने अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं, क्या मैं इनका इतना भी सम्मान नहीं कर सकता? जो स्वामी अपने अनुचरों को सदा सम्मान देते हैं, उनके सेवक गण अर्थाभाव होने पर भी उन्हें नहीं छोड़ते। और दूसरी बात ये कि कदाचित मेरे पाश को काटते समय तुम्हारे दांत ही टूट गए या वो बहेलिया ही लौट आया, तो इनके बंधे रह जाने से मेरा नरकवास निश्चित है।
6: धन्य महाशय, धन्य है। महाशय, मैं राजधर्म को जानता हूँ, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था।

0: जो राजा भृत्यों के प्रति करुणा का व्यवहार करता है वो राजा तीनों ही लोगों की रक्षा करता है। आप निश्चिंत रहें, मैं पहले इन्हीं के पाश को काटूंगा।
1: ये अद्भुत घटना है। हिरण्यक तो बड़ा बुद्धिमान है, इसके पास शक्ति और बुद्धि दोनों ही है। वाह, मोक्ष का ये बहुत अच्छा उपाय है। यद्यपि मेरा स्वभाव चंचल है, फिर भी मैं इसे मित्र बनाऊंगा। इसने पूरा जाल कितनी सफाई से काट दिया। अब ये कबूतरों का झुंड चला जाए तो मैं हिरण्यक से मिलूं। लो, ये तो उड़ गए। अब मैं विवर्ण के पास जाता हूं। मित्र हिरण्यक, बाहर आ जाओ। अरे शीघ्र आओ।
0: ये किसकी आवाज है? क्या कोई कपोत अभी भी फंसा रह गया है? महाशय, आप कौन हैं?
1: मैं लखुपतनक नाम का काक हूँ। एक आवश्यक कार्य से आपके पास आया हूँ।
0: मुझे आपसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से शीघ्र चले जाएं।
1: आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देना चाहते? मैंने आपको चित्रग्रीव के बंधनों को काटते हुए देखा है, तभी से मैं आपसे अत्यंत प्रभावित हो गया हूँ। कृपया मेरी मित्रता स्वीकार कर लें।
0: नहीं नहीं महाशय, बिल्कुल नहीं। परस्पर विरोधी स्वभाव वालों में भला मित्रता कैसी? आप भक्षक हैं, मैं हूँ भक्ष। मैत्री और शत्रुता बराबर वालों में ही शोभा देती है, सबल और निर्बल में मित्रता कैसी भला?
1: मित्र हिरण्यक, मैं आपके द्वार पर बैठ गया हूँ। यदि आप मुझसे मित्रता नहीं करेंगे तो यहीं पर प्राण दे दूंगा मैं।
0: अरे देखिए महाशय, अत्यंत घनिष्ठ होने पर भी शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल चाहे जितना भी गर्म हो वो आग को बुझा ही देता है। फिर आपका और हमारा तो स्वभावगत बैर है।
1: अरे भाई, अभी तो आपका दर्शन भी मुझे नहीं मिला, तो बैर कहाँ से हो गया? मेरे साथ मित्रता करने के लिए आप एक बार बाहर निकलकर मुझसे भेंट तो करें। आप भरोसा करें, मैं अत्यंत सदाशयी हूँ। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं वचन दे सकता हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं महाशय, मुझे आपके वचन पर विश्वास नहीं है। और आश्वस्त ना होने पर दुर्बल व्यक्ति भी बलवानों के द्वारा मारा नहीं जा सकता।
1: नीत के विषय में हिरण्यक की बुद्धि धारदार है। मित्र हिरण्यक, विद्वानों का कहना है कि एक साथ सात कदम चलने से या सात वाक्य के प्रयोग से ही परस्पर मित्रता हो सकती है। इस नाते अब तुम मेरे मित्र हो चुके हो। यदि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो विवरण के भीतर से ही तुम मेरे साथ बातचीत, गुण दोष विवेचन और सुभाषित गोष्ठी करना।
0: लघुपतनक जी, आप बड़े चतुर एवं वाक्पटु जान पड़ते हैं। आपसे मित्रता मैं एक शर्त पर कर सकता हूँ कि आप कभी भी मेरे विवरण के भीतर चरण नहीं रखेंगे।
1: भद्र, मैं आपके कथनानुसार ही रहूंगा।
2: उस दिन से दोनों मित्र आपस में सुभाषित गोष्ठियों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। लघुपतनक विभिन्न प्रकार के सामिश पकवानों को लाकर स्नेहपूर्वक हिरण्यक को दिया करता। हिरण्यक भी अन्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों को रात्रि में एकत्रित करके प्रातःकाल गोष्ठी में आए हुए लघुपतनक को देता था। दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था। एक दिन लघुपतनक ने आंखों में आंसू भरकर हिरण्यक से कहा,
1: भद्र हिरण्यक,

0: क्षेत्र से मेरा मोह भंग हो गया है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।
1: अरे प्रिय लघुपतनक, आपके इस मोह भंग का कारण क्या है?
0: यदि जानना चाहते हो तो सुनो। अनावृष्टि के कारण इस देश में अकाल पड़ गया है, जिस कारण लोग भूख से पीड़ित रहते हैं। तो काक के निमित्त बलि भी कोई नहीं करता। ऊपर से पक्षियों को फंसाने के लिए जाल भी फैला रखे हैं। मैं किसी तरह से बच निकला हूं, अब मुझे विदेश जाना ही है।
1: ठीक कह रहे हो मित्र, तुम तो वैसे तुम जाओगे कहाँ?
0: दक्षिण के अरण्य में एक बहुत बड़ा तालाब है, वहां मेरा घनिष्ठ मित्र मंथरक नाम का कछुआ रहता है। मैं सोच रहा हूं सुभाषित गोष्ठी के साथ अच्छे भोजन का आनंद भी लूं। यहां रहकर अपने साथियों का विनाश नहीं देख सकता।
1: ठीक है, यदि आपने निश्चय कर ही लिया है तो मित्र मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे भी यहाँ पर बहुत कष्ट है।
0: मैं तो आकाशगामी हूँ, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं?
1: मित्र, यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं ना, तो अपनी पीठ पर चढ़ाकर मुझे वहाँ पहुँचा दे, अन्यथा मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
0: अरे वाह, ये तो बड़े हर्ष का विषय है मित्र। वहाँ पर हम तीनों सुख से समय व्यतीत कर पाएंगे।
2: काक की बात को सुनते ही हिरण्यक तत्काल उसकी पीठ पर चढ़ गया। वो कौवा धीरे धीरे उड़ते हुए उस तालाब के किनारे पहुंच गया। एक वृक्ष की कोटर में हिरण्यक को बैठाने के बाद स्वयं भी एक शाखा पर बैठकर उसने मंथरक को आवाज लगाई।
0: मित्र मंथरक, मंथरक, अरे मैं तुम्हारा मित्र लघुपतनक हूं। आज बहुत दिनों बाद तुम्हें देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं, आकर मुझसे तो मिलो।
3: अरे लघुपतनक, तुम आओ, मेरे गले से लग जाओ भाई, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं। कहो, इतने दिनों बाद कैसे याद आया ये मित्र?
2: पारस्परिक आलिंगन के पश्चात प्रेम पुलकित होकर दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना अपना समाचार कहने सुनने लगे। अब हिरण्यक भी आकर उनके साथ बैठ गया।
4: अरे लघुपतनक, ये चूहा कौन है? तुम्हारा भक्ष्य होने पर भी तुम उसे पीठ पर चढ़ाकर क्यों लाए हो? कोई विशेष बात?
0: मित्र, ये हिरण्यक नाम का चूहा मेरा मित्र है।
4: अच्छा?
0: मेरे द्वितीय प्राण के समान प्रिय है मुझे।
4: ओ,
0: इनमें कई गुण हैं, अत्यंत सज्जन भी है।
4: अच्छा?
0: कुछ विशेष कारणों से विरक्त होकर तुम्हारे पास चले आए।
4: ओ,
0: और अपने स्थान का परित्याग कर दिया।
4: अच्छा, इनके वैराग्य का क्या कारण है भाई?
0: भद्र हिरण्यक, अब तो तुम यहाँ पहुँच गए हो, अब तुम अपने विरक्ति का कारण हम दोनों को बता दो।
1: सुनो, एक मठ में ताम्रचूर नाम का एक सन्यासी रहता था। वो भिक्षाटन से अपनी जीविका चलाया करता था। भोजन से बचे अन्न को भिक्षा पात्र में रखकर उसे खूंटी पर लटका दिया करता था। मुझे ज्ञात होने पर मैं अपने कुटुंबियों को लेकर प्रतिदिन भरपेट भोजन करने वहां पहुंच जाता था। एक बार सन्यासी से मिलने उनका मित्र बृहस्पति आया, परंतु सन्यासी को आतिथ्य के बजाय अपने अवशिष्ट भोजन की चिंता अधिक थी। इस कारण बृहस्पति क्रोधित हो गया। ताम्रचूर ने जब हम चूहों के उत्पात के कारण हो रही परेशानी के विषय में बताया, तो बृहस्पति ने मुझे मारने के कई तरीके अपनाए। मैं उससे दुखी हो गया। एक बार

0: मैंने बृहस्पति के धन को चुराने का निश्चय किया, परंतु चोरी के समय वो सन्यासी जाग गया। सच कहते हैं मित्रों कि जो चीज हमारी है हमें अवश्य प्राप्त होगी।
1: मिलने वाली वस्तु मनुष्य को अवश्य मिलती है, विधाता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अतएव किसी वस्तु के विनष्ट होने पर मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए और किसी वस्तु के अनायास मिल जाने पर आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। जो वस्तु हमारी होगी वो तो मिलेगी ही। इसी संदर्भ में हिरण्यक ने वणिक पुत्र की कथा सुनाई।
0: किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वणिक रहता था। एक बार उसके बेटे ने एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में लिखा था, जो वस्तु जिसे मिलने वाली होती है अवश्य मिलती है। तब उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता।
2: ये बात तो अति उत्तम है। अब मैं ना तो किसी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर दुखी होऊंगा और ना ही अनायास मिल जाने पर आश्चर्य करूंगा, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वो तो मुझे मिलेगी ही नहीं, और मेरे भाग्य में आने वाली वस्तु किसी दूसरे के पास जाएगी ही नहीं।
3: ये कौन सी पुस्तक है, इसे बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो?
2: देखिए पिताजी, इस श्लोक में कितनी अच्छी बात लिखी है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता।
3: मूर्ख, लिखे हुए श्लोक पर इतना भरोसा? इस बुद्धि से तुम क्या कमाई करोगे? मेरे पुत्र होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अगर उद्यम नहीं करोगे तो फल कैसे प्राप्त हो सकेगा?
2: आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ये श्लोक किसी विद्वान ज्योतिषी द्वारा रचा गया है, इसमें कुछ तो सत्य होगा ही।
3: निकल जा मेरे घर से, जा बाहर जाकर देख कि अपने भाग्य से तू क्या क्या अर्जित कर सकता है। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। जा, निकल जा मेरे घर से, जा।
0: पिता की भर्त्सना से दुखी होकर वो वणिक पुत्र उस नगर को छोड़कर दूर चला गया। जो भी उससे उसका नाम पूछता वो कहता, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को ही प्राप्त करता है। तो लोगों ने उसका नाम प्राप्त व्यर्थ रख दिया। एक बार उस नगर की राजकन्या चंद्रवती अपनी सहेली कादंबरी के साथ नगर निरीक्षण के लिए निकली।
4: सखी, मौसम कितना सुहाना है, आज विहार में आनंद आ गया।
5: हाँ, आज का ये दिन ही कुछ विशेष है, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल है। धनी देखो, सामने से किसी राजपुत्र की सवारी आ रही है।
4: कहाँ? अरे हाँ सखी, वाह अद्भुत सौंदर्य, क्या मनोहर रूप है। सखी मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलवा दो ना सखी, अन्यथा कामदेव के वाणों को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी।
5: धैर्य रखो सखी, धैर्य रखो, मैं अविलंब उस राजपुत्र से मिलकर तुम्हारे मन की बात बताती हूँ। राजकुमार की जय हो। युवराज, मैं अचिंत्य देश की राजकन्या चंद्रवती की सखी कादंबरी हूँ। मैं राजकन्या की ओर से कुछ निवेदन करने आई हूँ।
6: कहो कादंबरी, क्या संदेश भेजा है राजकन्या ने?
5: युवराज, राजकन्या आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व पर मुग्ध हैं। वो आपसे भेंट करना चाहती हैं। आपको देखने से उद्दाम मनोभावों ने उनकी दशा अत्यंत चिंतनीय बना दी है। यदि आप शीघ्र उनके पास नहीं जाएंगे तो आत्मोत्सर्ग के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं बचेगा राजकन्या के पास।
6: ये तो मेरे लिए भी हर्ष का विषय है, परंतु कादंबरी, यदि राजकुमारी के पास पहुँचना अनिवार्य ही है तो बताओ किस उपाय से मैं महल के अंदर प्रवेश कर सकूंगा?
5: सुनिए कुमार, रात्रि के समय राज प्रासाद के नीचे लटकती हुई चमड़े की स्थूल रस्सी के सहारे आप ऊपर चढ़ाइएगा।
6: ठीक है कादंबरी, यही उत्तम रहेगा।

0: मैं सही समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम अब जाओ।
1: जो आज्ञा।
0: ये कादंबरी क्या सत्य कह रही थी? राजकुमारी के साथ ऐसा करना अनुचित है। मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा।
2: राजकुमार ने अपना निर्णय बदल लिया और इधर प्राप्त व्यर्थ घूमता हुआ उस राजमहल के समीप पहुंच गया। रात्रि में महल के झरोखे से लटकती हुई रस्सी को देखकर कौतूहलवश महल पर चढ़ गया। प्राप्त व्यर्थ को ही राजकुमार समझकर राजकन्या ने उसका सत्कार किया, फिर उसके साथ विविध मनोविनोद किया।
3: हे राजपुत्र, आपके दर्शन मात्र से ही आपके प्रति आसक्त होकर मैंने अपना हृदय आपको दे दिया है। आपके स्पर्श मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। आपको छोड़कर अब कोई दूसरा मेरा पति हो ही नहीं सकता। क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
4: मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु और हर स्थिति उसे मिल ही जाती है।
3: नहीं, तो आप वो राजपुत्र नहीं है? कौन है आप?
4: हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी हर वस्तु से मिल ही जाती है।
3: दुष्ट, अभी मेरे महल से निकल जाओ, निकल जाओ, नहीं तो मैं सैनिकों को बुलवाऊंगी। निकल जाओ यहां से।
5: महल से निकलकर प्राप्त व्यर्थ नगर में भ्रमण कर ही रहा था, तभी वहां से एक बारात जा रही थी। प्राप्त व्यर्थ उस बारात में शामिल हो गया।
2: तो सुधीजन, आपने सुना कि प्राप्त व्यर्थ के अनुसार जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे अवश्य प्राप्त होता है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
7: राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के भीमपुर में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत जांच, जागरूकता, भागीदारी महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने इस दौरान सिकल सेल और थैलेसीमिया जांच मशीन गजील का शुभारंभ किया। यूनिफाइड सिविल कोड UCC को लेकर 23 मई को इंदौर और उज्जैन में बैठकें होंगी। इसके लिए रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है, जिसमें जेमिनी स्पार्क नाम का एक नया पर्सनल AI एजेंट भी शामिल है, जो यूजर्स की तरफ से खुद ब खुद काम करके उनकी मदद करेगा। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ICER में समर इंटर्नशिप कार्यक्रम 25 मई से 29 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें देश भर के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। भारतीय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जैन में 25-26 मई को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के बाबा काल भैरव मंदिर प्रशासन के अनुसार श्रद्धालु 500 रुपए शुल्क देकर सामान्य कतार से अलग गर्भगृह तक

0: का दर्शन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले दिन 3 दिन तक प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।
2: सभी श्रोता सखियों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम महिला सभा में। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त वंदना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज जब मैं आकाशवाणी आई तो सभी ने मेरे सनग्लासेस की बहुत तारीफ की। भाई, तारीफ क्यों ना करते, एकदम नए स्टाइलिश लग रहे थे। मेरी बेटी ने 3-4 दिन पहले ही मुझे ऑनलाइन सेंड किए थे। उसे तो शॉपिंग का बहुत शौक है। शॉपिंग करना तो आपको और हमको सभी को भाता है। बहुत उत्सुकता रहती है कि आजकल मार्केट में क्या नया चल रहा है ये जाना जाए। जो चीज़ ट्रेंड में है उसे खरीदा जाए, इसके लिए हम मार्केट जाते हैं। यदि हमें कोई चीज़ ऑनलाइन अच्छी दिख जाती है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। इससे कई बार हमें मार्केट से कम दामों पर ही अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध हो जाता है। बहनों, ऑनलाइन शॉपिंग हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बचत करती है, तभी तो काफ़ी फायदेमंद प्रतीत होती है। बहनों, आप जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाएं तो उसकी गुणवत्ता की जांच जरूर कर लें। वस्तु की गुणवत्ता और प्रामाणिकता को लेकर संशय होना ऑनलाइन शॉपिंग की समस्या हो सकती है, इसलिए सतर्कता जरूर बरतें। सखियों, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सदैव विश्वसनीय साइटों का ही प्रयोग करें और कोशिश करें COD मोड को अपनाने की, या फिर खरीदे गए सामान का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड से करें, क्योंकि किसी गड़बड़ी की स्थिति में ये आपके पैसों को सुरक्षित करने का एक बेहतर विकल्प है। बहनों, जब हम किसी कीमती सामान को ऑनलाइन मंगाते हैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी के ऑप्शन को जरूर चुनें। यानी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें वही उत्पाद मिले जिसका हमने भुगतान किया है। तो आगे से सखियों, ऑर्डर प्लेस करते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। बहनों, जिस वेबसाइट पर आप भुगतान की जानकारी दर्ज करती हैं, चेक करें कि वो आपके लेन देन को सुरक्षित रखती है या नहीं। इसके लिए एक संकेत है URL के पहले HTTPS दिखना चाहिए। सखियों, भौतिक खरीदारी में चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, स्पर्श करके महसूस करते हैं, वास्तविक रंग रूप और प्रक्रिया को समझ सकते हैं, बाजार जाकर घूम फिर कर मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। सखियों, मन चाही चीज़ों को बेशक खरीदिए, खूब शॉपिंग कीजिए आपकी अपनी ज़रूरतों के अनुसार, कभी भी ऑफर या सेल को देखकर नहीं। अरे अरे सखिए, इन्हें तो सुनिए जरा, ये तो अपने लिए किसी और से ही शॉपिंग करवा रही हैं।

0: क्यों कार्यक्रम के प्रवाह को आगे ले जाते हुए आपको सुनवाते हैं कहानी बोनसाई की बगावत। कहानीकार है डॉक्टर चारू चित्रा।
1: शालिनी ने बड़े आदमकद शीशे में अपने आप को देखा। उसे लगा कोई और ही उसके सामने खड़ा है। आजकल अपने आप को पहचानने में भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। उसका गेहुआ रंग सफेद हो चुका था, ऐसे ही जैसे दीवारों का पुराना पेंट कई परतों के बाद आखिरकार नए रंग में रंग ही जाता है। राज ने दो दिन पहले आके पार्लर में सब तय कर दिया था। कैटलॉग में वो उंगली रखते गए थे और राज की पसंद के हिसाब से शालिनी संवार दी गई थी। शालिनी को अपने घर में रखी नृत्य मुद्रा में एक हथेली ऊपर कंधे के पास और दूसरी कूल्हे के पास रखे वो गुड़िया याद आ गई, जिसे कोई भी आता जाता छू देता और वो कमर और गर्दन को हिलाकर नाचना शुरू कर देती। दरवाजे से बाहर कदम निकालते ही हल्की चिनमिन सी बारिश की फुहार को चेहरा उठाकर उसने छूने की कोशिश की ही थी कि तभी ड्राइवर ने छाते को उसके सिर पर तानकर फुहार की नाजायज गुस्ताखी पर वहीं रोक लगा दी। उसे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ राज को था। यहां तक कि पापा, मम्मी, भाई और छुटकी भी शादी के बाद उसे जोर से गले लगाने से हिचकिचाने लगे थे। एक शादी में शालिनी को देखने के बाद जब राज ने घर आकर उसका हाथ मांगा तो जैसे सब कृतार्थ हो उठे थे। सभी हैरान थे कि राज ने इस घर परिवार और शालिनी में ऐसा क्या देख लिया जो उसका दीवाना हो गया। राज ने शादी की पहली रात ही अपने पिछले कड़वे अनुभवों का जिक्र करते हुए ये स्पष्ट कर दिया था कि अब उसे एक साधारण परिवार की घरेलू ठीक ठाक सी लड़की चाहिए थी जो उसके कद और ओहदे को समझ सके और उसके सर पर नाच ना सके। शालिनी की छोटी सी झोली जिसमें बड़े बड़े सपने लेकर वह आई थी एकदम ही खाली हो गई। राज उसके परिवार की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा। आर्थिक कठिनाई झेलने वाले भाई को उसने अपने साथ बिजनेस में जोड़ लिया। शालिनी को बिना किसी व्यवधान के कॉलेज जाए बिना ही एमए की डिग्री मिल गई। पापा की लंबी बीमारी का अच्छा इलाज भी होने लग गया।

एक ही काम रह गया था, छुटकी के लिए अच्छा परिवार और वर ढूंढने का। राज ने वो खोज भी शुरू कर दी थी। राज ठंडी बयार की तरह परिवार के हर सदस्य को सुकून दे रहा था, लेकिन ऐसा क्या था कि अजीब सूखापन शालिनी के आसपास घिर गया था, जैसे सब कुछ खिंचा भिचा सा हो। तरलता को तरस गई थी वह। कहा था शालिनी ने एक दिन पापा मम्मी से, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, मुझे अपने घर वापस आना है। मम्मी ने घबराते हुए उसके हाथ को दबाया कि कहीं आवाज़ गलती से भी किसी तक पहुँच ना जाए। क्या कह रही है, क्या परेशानी हो सकती है तुझे यहाँ? इतना बड़ा बंगला, कारें, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, कितना ध्यान रखता है राज तेरा। अफरात में जब मिल जाए तो भी दिमाग खराब ही हो जाता है, माँ दांत भींचते हुए बोली। मैं कारपेट नहीं हूँ जो बिछती रहूँ, मैं इंसान। वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि पापा भी मम्मी का साथ देते हुए बोले, बेटा जी मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है। राज तुम्हें मारता पीटता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, कोई और है उसकी ज़िंदगी में, बोलो। शालिनी एकटक देखती रही पापा को, कहती भी तो क्या कहती। बेटा जीवन एडजस्टमेंट का नाम है, शादी को समय ही कितना हुआ है अभी, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तुम इतने साधारण परिवार से आई हो, वह भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट करता होगा। मानता हूँ थोड़ा डोमिनेटिंग है राज, लेकिन इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं कर लिया उसने। पापा थोड़े फिर रुके, कहा तू ना कहती थी कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, संभाल लूंगी सबको, अब इस परिवार का भविष्य तेरे साथ ही जुड़ा है बेटा। घर के सामने कार रुकने के साथ ही शालिनी के भागते मन पर भी रोक लग गई। खिली धूप में लॉन की चमकती मुलायम मैक्सिकन कारपेट, घास, आसपास करीने से क्यारियों में लगे देश विदेश से आए पौधे, सफ़ेद मेज़पोशों से सजी गोल मेज़ें, लाल रंग के रिबन बांधे अतिथियों के स्वागत को आतुर कुर्सियां, शहर के मशहूर गायक की कव्वाली पर झूमते ढाके लगाते रसूखदार पुरुष और महिलाएँ। राज वेलकम वेलकम करता हुआ फोटोग्राफर के साथ तेजी से आगे बढ़ा। पोर्च में एक तरफ खड़े मम्मी पापा और भाई भी उत्साह से उसकी आगवानी को आगे आए तो राज की एक दृष्टि से उनके बड़े कदम सहम गए। अब क्या चीज़ कैसे प्रस्तुत करनी है, ये राज को हमेशा पता होता है। यंग एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार यूं ही तो नहीं मिल गया था उसे। सबके सामने उसके हाथों को पकड़ता हुआ वह कह उठा, बेबी बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर धीरे से उसके कानों के पास आकर बेहद कड़े स्वर में वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, ये पल्ला क्यों लपेट रखा है, साड़ी का लुक ही नहीं आ रहा ढंग से। उधर से किसी की आवाज़ आई, नॉटी बॉय, ये क्या कानाफूसी चल रही है राज। इतने में मंत्री जी की कार के रुकते ही राज के साथ शालिनी भी उनके पैर छूने को झुकी तो मंत्री जी ने इत्मीनान से उसकी अनावृत पीठ पर ऊपर से नीचे तक हाथ फिराकर कुछ ज्यादा ही लंबा आशीर्वाद दे डाला। राज ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और वो एक गिजगिजे जानवर को पूरी दोपहर पीठ पर लिए घूमती रही। राज और शालिनी की शादी की दूसरी एनिवर्सरी का केक कटा और राज ने ग्लास पर चम्मच बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेहद रोमांटिक अंदाज में शालिनी की ओर देखकर बोला, अपनी मल्लिका की नाजुक गर्दन के लिए एक छोटा सा तोहफा इस गुलाम की ओर से। उसके साथ ही शालिनी की गर्दन हीरो जड़े हार से सज गई। जोर से तालियां बजीं और टू क्यूट, व्हाट अ लकी गर्ल, प्रेशियस, सो स्वीट, ट्रूली ब्लेस्ड जैसी आवाजें हवा में उछलने लगीं। लेकिन इस सुख को शालिनी जी ही नहीं पा रही थी। यादों के बवंडर में उलझी हुई थी वो। 2 सालों में पहली बार उसने राज से कोई तोहफा मांगा था। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, क्या चाहिए तुम्हें, कहते हुए राज ने उसे सीने से लगा लिया। राज मैं कोचिंग करना चाहती हूँ, यूपीएससी का इम्तिहान देना चाहती हूँ। राज ने सीने से लगी शालिनी को थोड़ा पीछे करते हुए बोला, क्या रखा है इस सब में, पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब करोगी? तुम हैसियत नहीं देखती अपने पति की, छोटी सी बात पर मंत्री आकर खड़े हो जाते हैं घर में। फिर उसके उतरे चेहरे को देख राज ने खुद ही रास्ता निकाल लिया। अच्छा तुम्हारा घर से बाहर निकलने का मन है ना, तो तुम समाज सेवा वगैरह कुछ कर लो, बल्कि अपना ही एक एनजीओ बना लेते हैं। राज बचपन से इसी सपने को सींचा है मैंने और मुझे लगता है मैं कर। अभी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही राज का ठंडा स्वर सुनाई दिया, नहीं यह तो नहीं हो पाएगा, घर में बहुत कुछ है करने को तुम्हारे पास। सख्त चेहरे के साथ बिना जवाब का इंतजार किए राज बाहर निकल लिया और शालिनी अपना वजूद बिस्तर के नीचे, कालीन की गर्द में, बर्तनों के सिंक में, अलमारियों और गुलदानों में ढूंढती फिरी। शालिनी की तंद्रा एक परिचित आवाज से टूटी। मशीनी ढंग से दी जाने वाली बधाइयों के बीच ये मंगल कामना कुछ अपनी सी लगी। अरे शेखर जी आप कैसे हैं, आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, वो भी फोन पर, कृतज्ञ हूं मैं, आप नहीं जानते कितनी बड़ी प्रशंसक हूं मैं आपकी। जाने कितने दिनों बाद वो अपने अंदर से फिर अपनी पुरानी शालिनी को खोज लाई थी। अपनी ही रौ में किलकती शालिनी शेखर को राज से मिलवाने को आगे बढ़ी। राज ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, शेखर, इन्हें सुनने तो कॉलेज भी बंक करके मैं पहुंच जाती थी।
یہ سارے شبد شالنی کے من کے اندر ہی رہ گئے تب تک ایکسکیوز می کہتا ہوا راج آگے بڑھا اور مڑ کر شالنی کو اشارے سے بلایا۔ راج کی ششٹتا اور مسکراہٹ برقرار تھی مگر کرور ہوئے تھے تو وہ تھے اس کے شبد۔ اس نے آہستہ سے شالنی کو کہا، اس کو کس نے بلایا ہے؟ شالنی نے ادھیکار سے کہا، میں نے۔ مسکراہٹ اور ششٹتا پر تمتماہٹ کا آورن پل بھر کو چڑھا اور پھر اسی روپ میں واپس آ کر راج بولا، رفا دفا کرو اسے، کہیں سے فٹ ہو رہا ہے وہ اس پارٹی میں؟ رواسی ہو اٹھی شالنی، لیکن ایسے کیسے؟ جیسے بولا۔

0: तभी राज की आवाज सुनाई दी। क्या कर रही हो? आओ जान, तुम्हारे बिना अधूरा हूं मैं। पलों में भाव भंगिमा मूड बदल लेने की राज की यह कला आज 2 बरस बाद भी शालिनी को अचंभित कर उठती है। राज लॉन में अपने पसंदीदा हिस्से में खड़ा था, जहां जब तब दस्ताने चढ़ा कैंची कटर तांबे की तारें लेकर कई तरह के खेल और प्रयोग वह पौधों पर किया करता है, और छोटे पेड़ों की एक दुनिया उसने वहां बसा ली है। छोटे छोटे बरगद, पाइन, जापानी लाल मेपल, जूनिपर, चीनी एल्म, फिकस, एडीनियम, यही नहीं संतरे, नारंगी, अमरूद से लदे फदे मिनिएचर्स जाने कितने ही विराट पेड़ों के घमंड को तोड़ते थे। लोग मंत्रमुग्ध थे राज की इस कला पर, और राज किसी विशेषज्ञ की तरह बड़े ही मनोयोग से सबको बोनजाई बनाने की बारीकियां समझा रहा था कि तभी सिन्हा साहब की आवाज ने व्यवधान डाल दिया। तांबे की तारों से लिपटे एक बोनजाई को सबको दिखाते हुए बोले, क्यों राज, तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रकृति के खिलाफ है? किसी की भी नेचुरल ग्रोथ को ऐसे क्यों रोकना है? टॉर्चर कर रहे हो तुम इनके साथ। इन्हें तारों से बांधना, काटना, फैलने से रोकना, बरगद पीपल जैसे विशाल पेड़ों को जरा सी ट्रे भर जगह देते हो। उन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने दो भाई। राज को विरोध पसंद नहीं है, अपने को जज्ब करता हुआ बोला, अरे साहब क्या कहते हैं, इटली के बोनजाई म्यूजियम में 1000 साल पुराना पेड़ रखा है। टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में 17वीं शताब्दी का बोनजाई देख तो मैं दीवाना हो गया। जब इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं, बाकायदा उसी तरह फल फूल देते हैं जैसे दूसरे पेड़ देते हैं, खूबसूरती तो देखिए इनकी, तो कैसे आप दावा करते हैं कि इनके साथ टॉर्चर हो रहा है? बस तकनीक का कमाल है, ग्राफ्टिंग और प्र्यूनिंग सही होनी चाहिए। हाँ, तारों से बांधने में कुछ छुटपुट निशान पड़ जाते हैं, एस्थेटिकली जरा अच्छे नहीं लगते, तो उनके भी तरीके हैं ठीक करने के। सौंदर्य सिर्फ खजुराहो, अजंता, एलोरा की मूर्तियों और पेंटिंग्स में नहीं है जनाब, इस कटाई छटाई और उससे उपजे बौनेपन में भी एक परिष्कृत सौंदर्य शास्त्र है। बहुत देर से चुप खड़ी शालिनी एकदम चुनौती दे बैठी, इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई बोनजाई अपने कद से आगे बढ़ गया तो? उसने बगावत कर दी तो? आकार और कद ना बढ़ने देने का ही तो सारा मसला है जाने मन, इतनी काट छांट के बाद या तो बोना रह जाएगा या मर जाएगा। कहते कहते राज मुस्कुराकर फोटोग्राफर को पोज देने को तैयार हो गया।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी डॉक्टर चारू चित्रा से उनकी कहानी बोनसाई की बगावत। सखियों, भौतिक विज्ञान ने मनुष्य को सभ्य बनाया, लेकिन उसे सुसंस्कृत नहीं बनाया। उसके लिए अंतः जीवन के मूल्यों को खोज निकालना होगा, ये कहना था पंत जी का। वे एक नई मानवीय संस्कृति को आगे लेकर आए। श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के आधार स्तंभ थे। उनकी सोच स्त्रियों के लिए देह से कहीं ऊपर थी। वे कहते थे कि जिस प्रकार फूल अपने हृदय का सौरभ सभी को देता है, उसी प्रकार स्त्री को भी अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। उसका सौंदर्य उसकी देह नहीं वरन उसकी भावनाएं हैं जो हृदय रूपी तिजोरी में बंद हैं। बहनों, इसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए अब सुनाती हूँ आपको पंत जी की एक रचना। बहनों, चाहे कलियों का खिलना हो या तितली का उड़ना, पंत जी ने अपने ही ढंग से प्रदर्शित किया है। नीली पीली ओ चटकीली, पंखों के प्रिय पंखुड़ियाँ खोले। नीली पीली ओ चटकीली, पंखों के प्रिय पंखुड़ियाँ खोले। प्रिय तितली, फूल सी हो फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल। तुम मधु की कुसुमित अप्सरी सी, उड़ उड़ फूलों को बरसाती। तुम मधु की कुसुमित अप्सरी सी, उड़ उड़ फूलों को बरसाती। शत इंद्र चाप रच रच प्रतिपल, शत इंद्र चाप रच रच प्रतिपल, किस मधुर गीत लय में जाती। तितली रंग बिरंगे फूलों पर बैठती है और उन्हीं फूलों से मधुमक्खी रस चूसती है। जब मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के फूलों पर जाती है तो उसका रस अवशोषित करती है और अपने अथक प्रयासों के बाद इन्हीं फूलों के रस को बदल देती है मीठे मीठे रस में, यानी शहद में। बहनों, आज हम धन्यवाद करते हैं शहद की रानी यानी मधुमक्खियों का, जिनका प्रकृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे पॉलिनेशन भी करती हैं, यानी पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती हैं। सखियों 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया

जाता है। प्रकृति में सभी का अपना विशेष महत्व है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, फूल पत्तियां या हम मनुष्य ही क्यों ना हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को जीवंतता दे रहे हैं। और पंत जी की रचनाएं सुनकर तो यूं लगता है कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे में समाहित होकर गुनगुना रहे हैं।

सखियों कलियों के खिलने से, भंवरों के गुंजन से और फूलों पर मधुमक्खियों के मंडराने से जन्म होता है मधुरस यानी शहद का। बोलते ही जुबान पर मिठास घुल गई ना। बहनों, शहद एक प्राकृतिक औषधि है, ये तो आप भी जानती हैं और हम भी। प्राचीन काल से ही घावों को भरने में शहद का प्रयोग किया जाता है। शहद एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, त्वचा को निखारता है। तभी तो हम और आप अपने फेस पैक में भी इसे मिलाते हैं। शहद त्वचा की नमी को बरकरार रखता है, पाचन में सुधार करता है, साथ ही पुरानी खांसी के लिए तो ये रामवाण माना गया है। शहद का प्रयोग हम सभी करते हैं, पर बहनों, इसके ढेरों फायदे हमारे लिए तभी लाभकारी हैं जब इसका सही प्रकार से सेवन किया जाए। बहनों, फेस पैक हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, हमें स्मार्ट बनाता है। गर्भवती महिलाओं को शहद का सेवन करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर ले।

लेना चाहिए। यदि हम लगातार ज़्यादा मात्रा में शहद का सेवन करते हैं तो हमारा वजन बढ़ सकता है। तो ख्याल रखिए, क्योंकि शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो होता ही है, जो शक्कर का प्राकृतिक रूप है। सखियों, कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि शहद का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पर ये एक भ्रांति है। रिसर्च में ये सिद्ध हुआ है कि यदि हम लगभग 2 बड़े चम्मच शहद का सेवन नियमित रूप से 8 सप्ताह तक करते हैं, तो इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। शहद का सेवन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें, जैसे इसे कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। वे लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें भी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात में गुनगुने दूध के साथ शहद का सेवन करते हैं, तो कुछ लोग सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू के रस के साथ शहद लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी पिघलने लगती है और हम हो जाते हैं स्लिम ट्रिम, यानी स्मार्ट वुमेन। तो सखियों, आप भी स्मार्ट बनिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब कार्यक्रम का समय हो चला है समाप्त, तो अपनी सखी वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का। श्रोताओं, एक सूचना है आपके लिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा ये जानकारी हम आपको दे दें। भोपाल नगरीय क्षेत्र में विभिन्न समुदाय संगठन, राजनीतिक दल, समिति, प्रतिनिधिमंडल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर त्योहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों हेतु किए जाने वाले धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं, जिससे पुलिस एवं यातायात की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य हो जाती है, ताकि आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर कोई असर न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाई जा सके, इसलिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्यक है, ताकि उससे सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसलिए भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, और ना ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के उत्तेजात्मक भाषण दिए जाएंगे, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुपत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना या करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जनसामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा। यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनीतिक दल, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक परिसर पर किसी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है, तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी 2 माह तक प्रभावशाली रहेगा, और आदेश का उल्लंघन करने वाले पर संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। मुस्कान गौतम के गाए कुछ लोकगीत आज आप सुनेंगे। आरंभ कर रहे हैं इस चौकड़िया के साथ। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुस्कान गौतम के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे साक्षी कुलश्रेष्ठ के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: विषय राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।
6: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सागर फिल्म का ये गीत है। एसपी बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले ने इसे गाया है। जावेद अख्तर ने गीत लिखा, धुन बनाई आर डी बर्मन ने।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म जबरदस्त के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। हवाई अड्डे पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने उनका स्वागत किया। इटली के पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने उनके सम्मान में रात्रिभोज दिया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत और इटली के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि दोनों देशों के बीच 2025 से 2029 तक की संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना की भी समीक्षा होगी। इस दौरे में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी खास चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लंबे समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है, इससे जरूरी फेरबदल आसान होंगे। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया
1: कि इस वर्ष में मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे और बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उनको सारे विभागों को निर्देश दिया को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रदेश में AI आधारित डिजिटल सेवाओं और क्लाउड तकनीक के इस्तेमाल पर रणनीतिक चर्चा होगी। सिंहस्थ 2028 के लिए स्मार्ट भीड़ प्रबंधन और AI पुलिसिंग के साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में तकनीक के उपयोग पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में गूगल क्लाउड इंडिया और सिंगापुर से आए वैश्विक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के दौरे पर हैं। वे भीमपुर के पुलिस ग्राउंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां सिकल सेल और थैलीसीमिया जांच मशीन का उद्घाटन किया जाएगा और जरूरतमंदों को हितलाभ भी बांटे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत आज पहली बार शहडोल पहुंच रहे हैं। वे ट्रेन से कटनी आएंगे और फिर सड़क मार्ग से शहडोल पहुंचेंगे। 3 दिन के इस प्रवास में उनका मुख्य कार्यक्रम पांडव नगर के सरस्वती स्कूल में होगा, जहां 300 से ज्यादा शिक्षार्थियों के साथ बौद्धिक शिविर आयोजित है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश के हजारों दवा दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है और ना ही कोई जवाबदेही। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ा है जो रोजाना के दवाओं के लिए पूरी तरह रिटेल दुकानों पर निर्भर हैं। इंदौर में आज से ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। होटल मैरियट में हो रहे इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी और प्रतिनिधि अपने अपने देशों के स्टार्टअप और नवाचार मॉडल साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कल बैठक के दूसरे दिन प्रतिनिधि क्रिस्टल IT पार्क और पीतमपुर की सिप्ला कंपनी का दौरा भी करेंगे। प्रदेश में गर्मी ने सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल नौगांव में तापमान 47 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री पहुंच गया। वहीं प्रदेश के 22 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा और ग्वालियर में भी पहली बार 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन लू की चेतावनी जारी की है। आपको समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की इटारसी स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में निश्चय पोषण योजना के तहत 12 क्षय रोगियों को पोषण सामग्री वितरित की गई। नीमच में कल 21 मई शासकीय ITI मनासा में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से नगर में भव्य गीता भवन के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-MB3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा, राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम

0: विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।

0: मेजर जनरल भगवंत चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है, और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। इसमें श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहली पसंद शामिल कर रहे हैं हम कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बट्टा की।

अनिल कामले, नेहा फणसे, सीमा सबीहा, सुषमा स्लीमा, पूजा गुमास्ता नगर इंदौर से अपनी पसंद हमें भेजते हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा की ये पसंद है। गिरफ्तार फिल्म का ये गीत किशोर कुमार आशा भोसले का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत लिखा है, बप्पी लहरी की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां की, लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। उपाध्याय नगर से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, मेंढकी रोड से राघु सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत की, और राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन की, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की। गुलामी फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, लता मंगेशकर का गाया हुआ। धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने।

कोटवा नारायणपुर से अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिया नेवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, अश्विनी रोशनी राय और प्रांजल राय की। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, राजू बाई, रोजू बाई तड़वी, परु मुबारक पारिकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर पारिकर की। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी की। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की। सुनना पसंद किया है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, भूपिंदर और आशा भोसले का गाया फिल्म एतबार से ये गीत है।

0: फिल्म एतबार का ये गीत था, आशा भोसले और भूपिंदर ने इसे गाया था, हसन कमाल का लिखा और बप्पी लहरी की धुन थी। इसके साथ ही आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। हवाई अड्डे पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने उनका स्वागत किया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में लंबे समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल सेवाओं और क्लाउड तकनीक के इस्तेमाल पर रणनीतिक चर्चा होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बैतूल जिले के दौरे पर हैं। वे भीमपुर के पुलिस मैदान में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज प्रदेश के हजारों दवा दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि ऑनलाइन दवाओं की ना कोई निगरानी है ना कोई जवाबदेही। इंदौर में आज से ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक शुरू हुई। होटल मैरियट में हो रहे इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमी और प्रतिनिधि अपने अपने देशों के स्टार्टअप और नवाचार मॉडल साझा कर रहे हैं। और प्रदेश में गर्मी ने इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल नौगांव में तापमान 47 डिग्री और खजुराहो में 46.4 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन लू की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित करेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। आज रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में चर्चा का विषय है। रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। क्या ऐसा होगा, ये नाटक प्रसारित करेंगे रात्रि 10:00। लेखिका श्रीमती मधु राजन, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में सुनिएगा पंडित एमएस गोपाल कृष्ण का वायलिन पर बजाया राग भूपाली। आपको बता दें आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। ये थी जानकारी संध्याकालीन प्रसारण की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय 2:02 होने को है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा समाप्त होती है। शाम 5:00 हम पुनः हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी है।

0: कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूं, बहुत बहुत बढ़िया हूं।
0: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी।

0: रही हूँ, क्या बात है।
1: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
0: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया, हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो। और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
1: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
0: अच्छा,
1: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या,
0: अरे वाह,
1: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, जब भी चेहरे की चमक बता रही है
1: बिल्कुल,
0: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी हैं।
1: बिल्कुल,
0: कैसी रही यात्रा और क्या रहा अनुभव?
1: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
0: अच्छा,
1: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में, कि गाड़ी करो, ये करो, तब जाओ वहां तक पहुंचो, आपको एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहां पे।
0: अच्छा,
1: तो बस आप रोपवे तक पहुंचिए अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो, और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
0: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
1: बिल्कुल, और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को जो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो, इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है।
0: वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ है, तीर्थ जगह है, स्थान है, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है, ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो, तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है।
0: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
1: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखे, बहुत
0: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है, हमें नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
1: हैं, तरह तरह के व्यंजन आपको खाने के लिए मिलते हैं। जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है, मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
0: लेकिन फर्क होता है, स्वाद
1: बिल्कुल फर्क होता है,
0: क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है, फील गुड महसूस कर रही है,
1: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
0: तो चलिए, सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
1: जी।
0: तो अब एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग
1: चार
0: गए
1: चांद
0: है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी बताइए। तो देखिए आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: पर काटती बहुत बुरा है।
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि
1: जी
0: अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं की ज्ञाता है। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें और जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया है, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल। तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा, हमें खिलाएंगे भी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती हुई नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट
1: खाएगी। भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
1: एक
0: है ना?
1: बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने ही कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं, वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा भी तुमने शुरू में बताया भी था
1: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की

0: स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
0: करेगी। बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकी तरीके से इस चीज को लिखा है।
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगी, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खियां, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का.
0: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को.
1: बिल्कुल.
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे देश में,
1: जी
0: हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीज़ें हैं जहाँ पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीज़ों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और
1: जी
0: उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार,
1: अरे बहुत
0: है ना. और हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियाँ. और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे
1: जी.
0: में.
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं. तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सकें.
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती. और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी. तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ तीन होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है. इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने
1: अच्छा
0: लगा है.
1: जी. तो उनके
0: हाँ,
1: शिक्षक का नाम और उनका जो
0: नाम
1: तीन
0: जुड़
1: भाई
0: के.
1: थे मिलके.
0: हाँ देखिए.
1: और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे.
0: बिल्कुल सही कहा. और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं. और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है. बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये
1: जी,
0: तकनीक,
1: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: बहुत
1: भी.
0: मुश्किल है.
1: तो इसमें एक या दो ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है. ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं. तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं.
0: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसके
1: जी
0: अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है.
1: जी और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है. अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है. और मुशब्बर का डिज़ाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिज़ाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है.
0: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी. और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है. मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है. तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है. ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं.
1: बिल्कुल. और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं. कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं. तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है.
0: हाँ बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं. और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं या विवाह समारोह के अवसर हैं या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है. और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है. तो आरती मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए.
0: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का.
1: हाँ,
0: तो हमसे शामिल करें.
1: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं.
0: गीत सुनते हैं.

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दी
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं,
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं, इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको, मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहाँ कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों है, है ना। देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े
0: हैं। बहुत गहरी बात है आरती, अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझते, समझ में आता है ना, तरीके से जिस भाषा को जानते हैं,
0: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
1: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है, लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
1: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की

0: आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये
0: हाँ,
1: कभी मत मन में
0: बिल्कुल,
1: लेकर आइए।
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
1: जी। और साथ ही जो वयस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
0: क्या
1: है।
0: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल
1: जी
0: डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं
1: जी
0: पीएचडी हूँ, है ना,
1: जी
0: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है,
1: जी
0: डिग्रियां लेते हैं आप, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी
1: बिल्कुल
0: नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना
1: जी
0: जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप
0: हाँ,
1: खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव
1: जी
0: आता है वो कितना सुंदर होता है ना,
1: बिल्कुल
0: ये सबसे
1: बिल्कुल
0: बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती,
1: जी
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या
1: जी
0: लिखती हैं
1: सबका नजरिया
0: ये
1: अलग होता
0: मायना
1: है।
0: रखता
1: जी
0: है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है, और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे
0: हाँ
1: कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में
0: हाँ
1: क्योंकि
0: कितना अच्छा
1: हाँ
0: लगा
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहा है,
0: हाँ, तो
1: तो
0: वो
1: उस वजह
0: अपने
1: से
0: करीब पाते हैं ना आपको
1: बिल्कुल
0: कि ये हमारे ही लोग हैं, और भाषा एक दूसरे को जोड़ती
1: बिल्कुल
0: है
1: जोड़ती
0: ना।
1: है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
0: क्या बात है, तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी
1: जी
0: मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
1: बिल्कुल
0: लेकिन शौक रखना चाहिए
1: बिल्कुल अपने
0: कि
1: मन से सीखिए,
0: हाँ।
1: आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें
0: आपकी
1: किस तरह से बोल रहा
0: वोकेबुलरी
1: हूं मैं।
0: बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता
1: बिल्कुल
0: है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम
1: जी
0: रखते हैं, किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं
1: बिल्कुल
0: और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी। जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती तो हम सच में एकदम से कहने लगते कैसे इतनी भाषाएं
0: हाँ,
1: बोल
0: हम
1: लेते
0: चौंक
1: हैं।
0: जाते हैं
1: जी
0: और हमारी दृष्टि में उसके प्रति एक सम्मान और बढ़
1: बिल्कुल
0: जाता है,
1: बिल्कुल बढ़ जाता
0: देखने
1: है
0: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब
1: जी
0: हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो
1: बिल्कुल
0: भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और
1: जी
0: इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है
1: जी
0: ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ,
1: जी
0: कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है,
1: जी
0: लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती है।
1: बिल्कुल
0: तो एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया। इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया, और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे उल्टियाँ भी होने लगीं। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया है ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो
0: बिल्कुल,
1: अपना कुछ ना
0: वो तो
1: कुछ,
0: उनको तो लगेगा ना कि हम
1: हाँ,
0: पे हमला हो रहा है, तो
1: वो
0: फिर
1: भी तो
0: उन्होंने बचाव।
1: सुरक्षा महसूस करती
0: जी
1: है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है,
0: जी
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना। आपने पत्थर मारा
0: बिल्कुल,
1: और उसने पलट कर बदला ले लिया, तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं
0: पानी पे
1: मारना
0: भी
1: है,
0: अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल के
1: उसका
0: आप पर
1: उछल
0: आएगा।
1: कर आप पर आएगा। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे
0: बिल्कुल
1: तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी
0: जी।
1: शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
0: और ये
1: सामने
0: बहुत
1: आते हैं।
0: खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया आते तो
1: हाँ
0: बहुत ज्यादा, अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती
1: बिल्कुल सही कहा आपने। ततैया होता है,
0: है।
1: मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं।
0: हाँ
1: अगर आपने इनको छेड़
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दिया,
0: बच्ची
1: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो
0: बहुत।
1: पीले रंग का होता है ना,
0: हाँ हाँ
1: वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर हम
0: भाषाओं पे।
1: बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं, उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता, जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है,
1: हाँ
0: और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज़्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो
0: जी
1: मोहब्बत है ना
0: बहुत बड़ी भाषा
1: वो
0: आई है।
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती
0: बिल्कुल
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है, और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए कि, तभी हम कह रहे हैं श्रोताओं के जो विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है, तो
1: बिल्कुल
0: वो जो उनके अंदर चीजें ना, वो विचार सामने आते हैं, लिखती
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं
0: जी
1: अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और

0: जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी,
0: बिल्कुल। और
1: एक और हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है। हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है। और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है। और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी
1: है। भाषा
0: कि
1: भाषा है,
0: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा
1: अगर आपको
0: है,
1: वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
0: हाँ, चलिए,
1: बहुत जरूरी है।
0: भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है। हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं,
0: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती, भाई हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं।
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना,
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति

0: समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है, जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
1: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना, इसमें आता है।
0: बिल्कुल। और ये श्रोताएं जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहां सद्भावना होती है वहां रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
0: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो
1: क्या
0: अर्थ है।
1: हाँ, वो हाँ, क्या है? हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेम पूर्ण व्यवहार। और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
0: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
0: बिल्कुल,
1: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
0: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
1: अब मूल्यवान तो ये गीत ही है
0: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल।
0: प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भुनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी। तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़ मतलब पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें। एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको, गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ
0: ठीक
1: गुड़ को
0: है।
1: पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में इसे छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं। एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे
1: बिल्कुल, और
0: और
1: रेसिपी आपको
0: भी
1: वहाँ फेसबुक पेज पे मिली जाएगी
0: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
1: समय
0: कोशिश
1: की कमी
0: करूंगी।
1: की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहाँ एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहाँ ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
3: जी,
2: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
3: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
3: जी।
2: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
3: जी, जी।
2: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
3: जी,
2: वो एक अलग अनुभव था
3: जी।
2: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहाँ चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
3: हाँ।
2: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
3: हाँ,
2: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। जो घूमने जाओ तो अलग बात है
3: जी,
2: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो
3: हाँ,
2: कभी रहा ना हो
3: हाँ, हाँ।
2: तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था, लेकिन गुजरा। और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
3: अच्छा,
2: 86 में।
3: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था,
2: हाँ,
3: पंत जी का
2: हाँ,
3: इलाका
2: हाँ,
3: था, तो वो तमाम चीजें
2: और वो भी सब भी देखा हमने। वो पंत जी, अग्गे जी वहाँ हाँ, पे रहे, और रविशंकर जी का वहाँ पे वो था,
3: बिल्कुल
2: यस। तो ये सब भी
3: उदय शंकर जी का।
2: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
3: जी।
2: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
3: रहते कैसे
2: उस वक्त।

0: हैरान होता था मैं कि
1: जी
0: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है
1: वो पहाड़ों में
0: पहाड़ों में कैसे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये था।
1: मुंबई 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
0: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये सपनों की नगरी थी,
1: जी
0: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही ख़राब है। उस वक्त ये 86 में जब हम आए आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफ़र, लोकल ट्रेनों का सफ़र, एक
1: जी
0: अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है उस
1: हाँ
0: पर वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सवाल ही उठता, हम तो फ्रेश थे एकदम, है
1: बिल्कुल। और तब तो
0: ना।
1: लंबी लाइनें
0: हाँ,
1: हुआ
0: वो लंबी
1: करती
0: लाइनें
1: थी।
0: हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटॉपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटॉपिल से किंग सर्कल आना वहाँ से पैदल,
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
1: हाँ,
0: में।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
0: हाँ,
1: ढाल लेता
0: तो फिर
1: है।
0: वो लोग अपने आप वो आपको उतार देते
1: जी
0: हैं तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे।
0: उतार तो
1: जी, तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी।
0: चरम
1: जी
0: पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी,
1: जी
0: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त चीज़
1: बजाया करते थे
0: बजाया
1: उसको।
0: करते थे लोग। तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गज़ल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो और
1: बिल्कुल
0: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा। अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार है,
1: बल्कि
0: बहुत
1: हमने उनको
0: प्यार।
1: बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
0: जी,
1: तब मैं
0: सही
1: था
0: सही
1: नहीं शहर में।
0: हाँ। तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कुछ चीज़, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में, युवाणी में जो अपनी आवाज़ पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज़ को आकाशवाणी में सुनकर जो
1: जी
0: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में अपनी गज़ल सुन के हुई थी,
1: क्या
0: है
1: बात
0: ना।
1: है,
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गज़ल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गज़ल सिंगर ने या गायक ने, जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
1: पेडर रोड।
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
1: जी
0: मैं गया, और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज़ सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो
1: जी
0: रोज़ रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे, फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे, और फिर उन्होंने वो गज़ल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे,
1: जी
0: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गज़ल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी, तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह
0: वरना
1: वाह
0: अक्सर होता है
1: वाह
0: कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ,
1: जी जी
0: है ना।
1: जी जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे, ये
0: नहीं, ये जो जिंदगी की
1: जो
0: किताब है,
1: जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह
0: तो ये वो
1: वाह।
0: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब।

0: ये शराब और वो हल्की फुल्की गज़लों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गज़लें बहुत हैं, मुझे एक हल्की फुल्की गज़ल चाहिए। हाँ,
1: अच्छा
0: तो मैंने पहली गज़ल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ,
0: वो ये गज़ल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और
1: जी
0: वो गज़ल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
1: अच्छा,
0: वो गज़ल शराब पड़ती। तो वो
1: गजब
0: गज़ल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
1: जी, ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ
0: हाँ
1: पूरी तरह से जुड़ गई है, और
0: जी
1: ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, मैं
1: वही
0: उसको
1: आप
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर
0: एक
1: जरूर।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब मैं तो खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूँ कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था।
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना। तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील
1: नबील,
0: था।
1: नबील
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गज़ल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गज़ल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गज़ल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या एक नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे।
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: दो
0: में
1: घंटे आता
0: गाया।
1: रहा, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ,
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही।
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये

0: पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
1: ओहो
0: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
1: जी
0: ये यही की गजल है। तो बोल, ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
1: हाँ हाँ हाँ
0: सीरियल
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बड़ा
0: वो
1: नाम है अजय
0: हाँ,
1: कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने मेरा ये कमेंट था। अच्छा,
1: जी
0: दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज उदास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
1: जी
0: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहाँ गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो उन्होंने पंकज जी ने ये गजल सुनाई। तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर बजू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
1: हाँ बिल्कुल
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया या कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया। हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ फिर एक बार। फिर उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए बजरू साहब, उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये। तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
1: जी
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह
0: तो ये
1: वाह,
0: मजरूह
1: मजरू जैसे
0: सुल्तानपुरी साहब का
1: बड़े
0: आशीर्वाद
1: शायर
0: था,
1: की बात
0: है
1: है
0: ना।
1: ये,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है। पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
0: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफ़र तो मेरा ज़्यादातर तो शायरी का ही रहा,
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे
0: बिल्कुल
1: पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है,
0: जी
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल, बहुत ही मशहूर
1: मशहूर।
0: जी
1: आज तो वो दौर नहीं है,
0: जी
1: लेकिन एक ज़माना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी,
0: जी
1: मजरू सुल्तानपुरी, कैफ़ी
0: कैफी आजमी
1: आज़मी, मुमताज़ राशिद, और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
0: जी
1: बशीर
0: जी
1: बद्र, निदा साहब, निदा साहब उसके संचालन कर
0: सदर
1: रहे थे,
0: जी
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे
1: अजीत एक्टर,
0: जी
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू
0: अलग
1: सेंटर
0: ही
1: के
0: होता
1: मुशायरा अलग
0: था
1: ही हुआ करता था,
0: जी।
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है
1: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा, तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे
1: तो
0: बाप रे।
1: शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुला कि मेरा पहला मुशायरा, और ये ऑडियंस, ये लोग है
0: जी
1: ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गज़ल पढ़ी, तो वो गज़ल जब पढ़ता गया, तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज़ राशिद और जफ़र गोरखपुरी,
0: हाँ
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफ़र गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया, मतलब
0: अरे अब तो
1: ये
0: शुरुआत कर रहे थे जबकि
1: हाँ
0: जी।
1: मुशायरा तो हो गया,
0: अरे बाप
1: मतलब
0: रे, बहुत बड़ी बात
1: हाँ, तो
0: है
1: ये बड़ी बात थी। तो
0: जी
1: ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
0: जी
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया
0: गजब
1: अपने घर पर, फिर
0: जी
1: उनसे वहाँ से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गज़ल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में,
0: जी
1: ये गज़ल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
0: हाँ
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
0: हाँ
1: आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
0: चले
1: दुनिया
0: गए
1: में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: चले गए,
0: जी
1: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ। चित्रा जी पता नहीं कब करेंगी, नहीं करेंगी।
0: जी
1: तो ये गज़ल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गज़ल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई, और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका इसका वो करें, हाँ, तो मैं
0: बिल्कुल
1: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
0: जी।
1: तो किताब लेके वो रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब, ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गज़ल गाई, दूसरी गज़ल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गज़ल गाई, और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गज़ल जो मैंने अभी गाई, ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
0: रिबन
1: वो कर दिया,
0: खोला
1: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया, और तालियाँ वालियाँ सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा।
0: जी
1: तो बोले नहीं राजेश रुकिए, तो मैं आया, तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
0: हाँ
1: पूरा,
0: बाकायदा और पूरा
1: हाँ
0: हॉल
1: पूरा
0: भरा
1: हॉल
0: हुआ है।
1: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
0: अरे
1: स्टैंडिंग
0: बाप रे
1: माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि, तो अब वो गज़ल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
0: अरे बाप रे
1: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
0: जी
1: उनको
0: जी
1: पसंद थी गज़ल, तो सारे, तो वो गज़ल पढ़ी, जाने कितनी उड़ान बाकी, तो बात वहीं ख़त्म हुई। मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी,
0: जी
1: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की, और जगजीत जी म्यूज़िक के साथ शुरू हो गए।
0: अरे गजब,
1: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
0: जी जी
1: आज
0: जी
1: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
0: गजब गजब,
1: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
0: अद्भुत
1: ये
0: अद्भुत।
1: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे यार, मुझे
0: अरे
1: क्यों नहीं
0: बाप
1: लगे,
0: रे यार, ये तो
1: और
0: बड़ा
1: आपको
0: मिस
1: मालूम
0: हुआ।
1: था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
0: वाह,
1: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया
0: क्या
1: था।
0: बात है, ये आपसे सुनेंगे।
1: हाँ जान।

0: है जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजल्ट का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके जिनके

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार।
1: जी
0: विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे, उजाले,
1: उनकी
0: उनकी
1: यादों पे।
0: यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
1: सखी
0: सहेली आपके
1: सहेली।
0: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
0: जी
1: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
0: बिल्कुल
1: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा। तो सबसे पहले यूनुस,
0: अरे राकेश जोशी जी,
1: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे, लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
0: सब
1: से।
0: चीजों को
1: हाँ,
0: संभालते
1: सब कुछ संभालते थे।
0: थे
1: तो एक अच्छी टीम थी जो
0: जी,
1: हर तरह से, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट था वो था, और
0: बिल्कुल
1: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
0: जी,
1: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
0: बिल्कुल। और हर
1: ऐसा कम
0: रोज आप
1: होता
0: एक
1: है,
0: नई चुनौती
1: ऐसा
0: सामने
1: कम
0: रखते
1: होता
0: थे
1: है।
0: जी।
1: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
0: नौशाद
1: साथ
0: साहब आ
1: कहीं।
0: रहे हैं,
1: हाँ
0: खयाम साहब आ
1: हाँ
0: रहे हैं
1: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए,
0: जी,
1: आनंद जी आए, है
0: बिल्कुल
1: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो
0: बिल्कुल,
1: सारे। और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
0: रवि जी
1: ना।
0: आए,
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: खयाम साहब,
0: खयाम साहब आए, और
1: हाँ
0: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
1: हाँ तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
0: मुझे याद है कि
1: हमारे
0: खयाम
1: मेहमान।
0: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
1: हाँ
0: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए
1: हाँ
0: हैं, और वहीं 1 घंटे बात हो रही
1: हाँ उनको
0: है
1: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो, उनको बोलने का बहुत वो था, वो
0: जी
1: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का, और
0: बिल्कुल
1: उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के। फिर हमने ये भी किया कि इनको हमको ज़ाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया। उनको कभी सरगम के सितारे, कभी मैं हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
0: ज्यादा
1: उनके
0: कर
1: ले
0: सकते
1: सकते हैं
0: थे
1: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं। ये
0: जी,
1: लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
0: बिल्कुल
1: में। तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
0: किसी
1: है,
0: के पास नहीं
1: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशंस पे है,
0: जी,
1: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो हैं, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। या
0: बिल्कुल
1: गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पे बातें हो रही है
0: जी,
1: ना। आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा,
0: एक से बढ़ के एक
1: एक से
0: चीजें
1: बढ़कर
0: हैं,
1: एक
0: एक से
1: प्रोग्राम जो
0: बढ़ के
1: है
0: एक हैं
1: वो हुए। प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर
0: और
1: और
0: ट्रिब्यूट
1: पूरा
0: हो रहा
1: प्रोग्राम
0: है
1: शुरू हो गया। तो ये
0: जी
1: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं
0: जी
1: हो सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी
1: हाँ
0: मैं बात
1: हाँ
0: करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट
1: ना
0: का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन
1: हाँ।
0: देना
1: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
0: जी
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए।
0: जी,
1: तो ये भी हुआ है, और ख़ास तौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
0: बिल्कुल
1: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
0: जी,
1: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद
0: बिल्कुल।
1: आया।
0: विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूं।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हम उपस्थित हैं अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम होंगे। पहले न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। बैठक में व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया। श्री मोदी ने भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करने में इटली की भूमिका की तारीफ की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2047 के तहत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र मेला भारत टेक्स 2026 का आयोजन इस साल 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमीर राव ने आज आगामी वस्त्र प्रदर्शनी के अनुरूप भारत टेक्स मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला के संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष विजय राठकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में लंबे समय से अटकी तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नई नीति में प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों को अलग अलग रखा गया है और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है।

शहर वही रहते हैं, फर्क बस लोगों से पड़ता है। कहीं राहें आसान हो जाती हैं तो कहीं सफ़र मुश्किल बनता है। ये सब बड़े नियमों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से तय होता है। जब हम बिना कहे सही करना चुन लें तो हर जगह थोड़ी बेहतर लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललिता शर्मा और आप सुन रहे हैं युववाणी। आज सुबह की ही बात है, मैं घर से निकली, थोड़ी जल्दी में थी लेकिन मन हल्का खुश था। ऐसा लगा कि आज का दिन अच्छा जाएगा। लेकिन जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची, मेरी नज़र सामने पड़े कचरे पर गई। किसी ने रात में ही उसे सड़क पर डाल दिया था और अब वो उधर उधर फैल रहा था। लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गई और सोचने लगी कि ये सब इतना कॉमन कैसे हो गया कि अब हमें ये गलत भी नहीं लगता। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक स्कूल बस खड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे उतर रहे थे, कुछ हंसते हुए, कुछ अपना बैग संभालते हुए। लेकिन पीछे से गाड़ियाँ लगातार हॉर्न बजा रही थीं, जैसे 2 मिनट रुकना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो। उस मोमेंट में मुझे अजीब सा लगा कि हम सबको जल्दी तो है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस जल्दी में हम क्या खो रहे हैं। फिर मैं ट्रैफिक सिग्नल पर पहुँची। सिग्नल पर रेड लाइट थी, मैंने गाड़ी रोकी। फिर मेरे साथ 2-3 लोग और रुके थे लेकिन बाकी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जैसे नियम सिर्फ कुछ लोगों के लिए हों, सबके लिए नहीं। उस समय मन में एक सवाल आया कि क्या ये सच में इतनी छोटी बात है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर दें, या ये वही चीज़ें हैं जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी को आसान या मुश्किल बनाती हैं। हम अक्सर बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमें लगता है कि समाज बदलने के लिए बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन सच तो ये है कि बदलाव हमेशा छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। वही आदतें जो हमें बिना सोचे करते हैं, वही आदतें जो हमें लगती हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक दिन मैं पार्क में बैठी थी, शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी, कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ बहुत शांत था लेकिन अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में किसी ने चिप्स का पैकेट खाकर वहीं छोड़ दिया, फिर किसी और ने भी वैसा ही किया। धीरे धीरे वही जगह गंदी लगने लगी। उस पल मुझे समझ आया कि गंदगी एक बार में नहीं फैलती, वो धीरे धीरे हमारी आदतों से बढ़ती है।

हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा फ़र्क रोक देती है। क्योंकि अगर हर कोई यही सोचेगा तो कोई शुरुआत ही नहीं करेगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी सोच बदल ले तो धीरे धीरे पूरा माहौल बदल सकता है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति बस इतना ध्यान रखे कि वो कचरा सही जगह डाले, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, पब्लिक प्लेसेस पर शांति बनाए रखें और दूसरों का ध्यान रखें, तो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चीज़ें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। ये सब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही सबसे पावरफुल चीज़ है, क्योंकि ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। ये हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास भी लोग हैं और हमारी हर छोटी आदत किसी ना किसी को प्रभावित करती हैं। अब ज़रा एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या हम हमेशा सही करते हैं? शायद नहीं, और ये बिल्कुल ठीक है, हम परफेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन हम बेहतर बन सकते हैं और वही सबसे ज़रूरी है। अगर हम हर दिन बस थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, अपने छोटे छोटे एक्शंस पर ध्यान देने लगें, तो धीरे धीरे ये

आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो हमें अलग से कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, सही करना अपने आप होने लगेगा। हम जिस जगह रहते हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, और जब हम उसे अपना मान लेते हैं तो हम खुद ही उसका ख्याल रखने लगते हैं। फिर हमें कोई नियम याद नहीं दिलाना पड़ता और कोई रोकना भी नहीं पड़ता। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें, बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? शायद यही छोटा सा सवाल एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

दोस्तों, आज के समय में एक और चीज़ है जो हमारी आदतें और हमारे व्यवहार और धीरे धीरे हमारी पूरी सोशल लाइफ को बदल रही है, और वो है मोबाइल फ़ोन। अब ऐसा नहीं है कि मोबाइल बुरी चीज़ है, सच कहूँ तो शायद आज इसके बिना ज़िंदगी इमेजिन करना भी मुश्किल है। सुबह अलार्म से लेकर रात की आखिरी नोटिफिकेशन तक हमारी दिनचर्या कहीं ना कहीं मोबाइल के आसपास घूमती है। हम उनसे पढ़ते हैं, सीखते हैं और लोगों से जुड़ते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। लेकिन कभी कभी यही मोबाइल हमें उन लोगों से दूर भी कर देता है जो हमारे सबसे पास होते हैं। कभी नोटिस किया है कि एक ही घर में चार लोग बैठे हैं लेकिन कमरे में साइलेंस होता है, क्योंकि हर किसी के हाथ में फ़ोन होता है। कोई रील्स देख रहा होता है, कोई चैट्स में बिजी होता है, कोई गेम्स खेल रहा होता है और धीरे धीरे बातचीत कम होने लगती है। पहले शाम को लोग छत पर बैठते थे, पड़ोसियों से बातें करते थे, बच्चे बाहर खेलते थे और परिवार के साथ बैठकर खाना खाते थे। अब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन तो हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड भी हैं। कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ एक फैमिली बैठी थी, माँ पापा और दो बच्चे। सबके सामने खाना था लेकिन किसी के बीच बातचीत नहीं थी। माँ फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, पापा कॉल्स में बिजी थे और बच्चे गेम्स खेल रहे थे। उस पूरे टेबल पर बस फ़ोन्स एक्टिव थे, लोग नहीं। तब मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट करने आई थी, लेकिन कई बार हम उसी की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे मोबाइल हमारे सोशल बिहेवियर को बदलने लगता है। आज कई लोग सामने बैठकर बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं लेकिन घंटों टेक्स्टिंग कर सकते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि स्क्रीन के पीछे इमोशंस फील नहीं करने पड़ते। लेकिन असली ज़िंदगी में लोगों की आंखें पढ़नी होती हैं, उनकी फीलिंग समझनी पड़ती हैं और उनके साइलेंस को भी सुनना पड़ता है। यही असली सोशल बिहेवियर होता है। अगर कोई इंसान हमसे बात कर रहा हो और हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते रहें तो उसे लगता है कि उसकी बात इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। यही छोटी आदतें धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा करने लगती हैं। बच्चों पर भी असर साफ दिखाई देता है। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, गिरते थे, उठते थे, दोस्तों से लड़ते थे और फिर मान भी जाते थे। उन्हें रियल इमोशंस और रिलेशनशिप नेचुरली समझ आते थे। लेकिन अब कई बच्चे घंटों स्क्रीन के सामने बिताते हैं। मोबाइल गेम्स और वीडियोज़ ने आउटडोर गेम्स की जगह ले ली है। इससे उनकी फिज़िकल एक्टिविटी ही नहीं, सोशल इंटरेक्शन भी कम होने लगता है। धीरे धीरे पेशेंस कम हो जाता है, अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है और रियल कन्वर्जेशंस ऑकवर्ड लगने लगती है। कई इमोशंस अब सिर्फ इमोजीज तक सीमित रह गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई वीडियो कॉल उस एहसास को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकती जो किसी अपने के पास बैठने में होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें मोबाइल फ़ोन छोड़ देने चाहिए। टेक्नोलॉजी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है। अगर मोबाइल को ज़रूरत की तरह इस्तेमाल किया जाए तो बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर वही हमारी पूरी दुनिया बन जाए तो कहीं ना कहीं हम असली दुनिया से दूर होने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी फ़ोन को साइड में रखकर अपने आसपास के लोगों को समय दिया जाए, फैमिली के साथ बैठकर बिना नोटिफिकेशंस की बातें की जाएं, दोस्तों से सिर्फ फ़ोटोज़ लेने के लिए नहीं बल्कि मोमेंट्स फील करने के लिए मिला जाए और किसी से बात करते समय उसे पूरा अटेंशन दिया जाए, क्योंकि रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड्स से नहीं अटेंशन से भी दिखती है।

शायद आज के समय में किसी को अपना समय देना सबसे बड़ी वैल्यू बन चुका है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आखिर में यादें फ़ोन्स में सेव नहीं होती, वो दिल में बनती हैं। और असली कनेक्शन वही होता है जहाँ नेटवर्क नहीं, लोग जुड़े होते हैं। दोस्तों, आज की इस बातचीत में बस इतना ही। कभी सड़कों की भागदौड़ में, तो कभी मोबाइल की स्क्रीन्स के पीछे, हम धीरे धीरे उन छोटी बातों को भूलते जा रहे हैं जो इंसानों को इंसानों से जोड़ती हैं। लेकिन शायद ज़िंदगी अब भी वही खूबसूरत लगती है जहाँ लोग एक दूसरे के लिए थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं और थोड़ा समझते हैं। तो अगली बार जब आपके हाथ में फ़ोन हो या आप किसी भीड़ का हिस्सा हों, बस एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ कनेक्टेड हूँ या सच में किसी से जुड़े भी हैं? क्योंकि आखिर में यादें स्क्रीन्स में नहीं, दिलों में बसती हैं। मैं हूं आपकी दोस्त ललिता शर्मा और आप सुन रहे थे युववाणी। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी
1: मीडियम वेव पर। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

आप सुन रहे थे महबूबा फिल्म के लिए श्रोताओं लता मंगेशकर और साथियों का गाया ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी और सुरों में ढाला संगीतकार आरटी बर्मन ने।

कुदरत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार का गाया, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन। और श्रोताओं, अब अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अजनबी से। इसे आवाजें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के लिखा और आर डी बर्मन ने धुन बनाई है।

खेल खेल में शैलेंद्र सिंह और गुलशन बावरा का लिखा ये गीत आपने सुना, शैलेंद्र सिंह का गाया, फिल्म का नाम खेल खेल में, धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको अपनी सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा शाम 6:00। शाम 6:30 पर लोक संगीत में आज आप सुनेंगे देवी सिंह दाहिया के गाए बुंदेली लोकगीत। शाम 6:45 पर सुगम संगीत में सुनिएगा अनवर हुसैन की गाई हुई चंद गजलें। आज शाम 7:21 पर कृषि जगत में सुनिएगा भेंटवार्ता पशु चॉकलेट पर डॉक्टर राहुल शर्मा से जानकारी। रात्रि 8:00 सुर्खियों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। 8:15 पर फिल्म संगीत, रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत में रात 10:00 सुनिएगा पंडित जसराज का गाया राग मियां की तोड़ी में ख्याल और रात 10:30 पर सुनना न भूलिएगा मन भावन। और आइए श्रोताओं, अब आपको कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल प्रातः 5:55 पर हमारी पहली सभा आरंभ होगी। 6:05 पर विचार मंथन, भक्ति संगीत, वंदना। 6:30 पर चिंतन। 6:35 पर श्री रामचरित मानस का गान होगा। 6:45 पर कृषि सामयिकी में गर्मी के दुष्प्रभाव से गौ पशुओं को बचाएं, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। गुड मॉर्निंग।

0: जबलपुर का वक्त आपको पता है, सुबह 7:20, 8:30 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम रिले करेंगे। 9:00 लोक रसधार में चित्रा देवी तिवारी और बेड़ीलाल अहिरवार के गाए बुंदेली लोकगीत आप सुन सकेंगे। ये थे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस घंटे की खास खबरें थोड़ी ही देर में आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। बैठक में व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। श्री मोदी ने भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करने में इटली की भूमिका की तारीफ की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां दी गई। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़ और किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फिल्म्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष विजय राठकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्राम रोजगार सहायकों का राज्य स्तरीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। प्रदेश भर से हजारों रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन की मांग कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 6:00 हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
1: और मैं अजीत। नमस्कार। राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
1: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
1: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
3: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
4: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
3: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
4: अब सो जाओ।
3: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।

0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962, जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
5: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
7: साहब,

0: तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
5: आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
6: वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। ऑल्दो ही वाजंट वेरी बिग, ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. he could make a big bruise.

0: You would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. Come, come, join in the fun. Hari leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time. So he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks.
1: They only did to me what I keep doing to the other children.
0: He thought.
1: But how it hurt and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore.
2: तो श्रोताओं, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। श्रोताओं, लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज सुनिए देवी सिंह दाहिया के गाए बुंदेली लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं देवी सिंह दाहिया के गाए बुंदेली लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत में देवी सिंह दाहिया के गाए बुंदेली लोकगीत। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनवर हुसैन के स्वर में चंद गजलें।

0: सुगम संगीत में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे अनवर हुसैन के स्वर में चंद गजलें। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान

0: नाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He added that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi also said that both countries are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and noted that their joint efforts against terror financing have set an important global example. Speaking on the occasion, Italian Prime Minister stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for high

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के बीच शिखर वार्ता। प्रदेश कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को दी मंजूरी। तबादला नीति 2026 भी पास। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बैतूल के भीमपुर में लॉन्च की अत्याधुनिक गजेल मशीन। 10 मिनट में होगी सिकल सेल की जांच। और कुछ ही देर में ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की। इस दौरान व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने और रक्षा साजो सामान के सह उत्पादन पर भी काम करेंगे। जहाजरानी, बंदरगाह आधुनिकीकरण और समुद्री अर्थव्यवस्था में भी मिलकर काम करने का फैसला हुआ है।
1: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के पेंशन के लिए 15,184 करोड़ और किसानों की फसल बीमा

0: योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को बताया,
1: आज करीब करीब 30,000 करोड़ के निरंतरता के कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वृद्धजनों के कल्याणी, महिलाओं दिव्यांगजनों की पेंशन योजना और महिला बाल सुरक्षा की कई योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रमिक कल्याण अधिनियम, अटल बिहारी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का रिवाइज एस्टिमेट जो आया था इसको आज स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2026 को भी मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में ग्राम रोजगार सहायकों का राज्य स्तरीय महासम्मेलन हुआ। महासम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। सहायक लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मातृत्व, पितृत्व और ऐच्छिक अवकाश देने के साथ सेवा की आयु सीमा 62 साल करने और निर्दोष साबित होने पर नौकरी वापस देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाने का भी ऐलान किया।
2: हमने रोजगार सहायकों की आयु भी बढ़ाई 62 साल। ऐसे में माता बहने भी जो आपके रोजगार सहायक है, उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश, कोई कारण से आपराधिक प्रकरण भी बन जाए किसी रोजगार सहायक पे और वो निर्दोष सिद्ध हो तो पुनः सर्विस में लेने की गारंटी भी हमारी सरकार के माध्यम से हम देने की घोषणा कर रहे हैं।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज बैतूल के भीमपुर में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यक्रम में अत्याधुनिक जांच मशीन गजील का शुभारंभ किया। ये मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर में लगाई जाएगी, जहां सिकल सेल और थैलेसीमिया की जांच महज 10 मिनट में हो सकेगी। भोपाल में त्विशा शर्मा की मौत के मामले में आज उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार इस मामले में परिवार की पूरी मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ फरार पति समर्थ के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत आज कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच शहडोल पहुंचे। वे 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे। यहां सरस्वती स्कूल में 18 मई से 8 जून तक चल रहे कार्यकर्ता विकास वर्ग में 4 प्रांतों के 383 स्वयंसेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस वर्ग में बौद्धिक सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण और संगठनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। डॉ. भागवत अपने प्रवास के दौरान राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों जैसे विषयों पर स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नीट यूजी पुनर्परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने पर जोर दिया। बैठक में ऑनलाइन गुमनाम समूहों के जरिए परीक्षा से जुड़ी फर्जी सूचनाएं फैलाने पर गहरी चिंता जताई गई। गुजरात के कच्छ जिले को राजस्थान और दिल्ली से जोड़ने वाली नई रेल सेवा इस शुक्रवार से शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भुज से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश में आज हजारों दवा दुकानें बंद रहीं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल बुलाई थी। हड़ताल को प्रदेश के ज्यादातर रिटेल और थोक दवा व्यवसायियों ने समर्थन दिया। भोपाल में केमिस्टों ने ऑनलाइन सिस्टम का पुतला भी दहन किया। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर अभी कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं है, जो सीधे आम लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह ने आज खंडवा के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रुपए की लागत से बने इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। सीहोर जिले की बुधनी के पारंपरिक लकड़ी के खिलौने अब राष्ट्र

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी खास जगह बना रहे हैं। G20 सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों को यहां के कारीगरों द्वारा बनाए गए 500 चरखे भेंट किए गए थे। वहीं दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला बाजार में भी इन्हें खूब सराहा जा चुका है। बुधनी में 29 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक खिलौना क्लस्टर बनाया जा रहा है।

की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी है। आईपीएल का 65वां मैच अब से कुछ देर बाद ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। प्लेऑफ के दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में मैच जीतना होगा। वे 12 मैचों में 11 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर हैं। मुंबई पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और 8 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य प्रगति पर है। गुना में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बीनागंज स्थित फैंसी पटाखा दुकान और गोडाउन का औचक निरीक्षण किया गया। आगर मालवा कलेक्टर ने आज स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए। जबलपुर में भारतीय रेल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के तहत पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों में 15 मई से 15 जून तक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले में नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी और गहरा जल संकट लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर व्यापक जन जागरूकता अभियान और सेमिनार का आयोजन किया गया। शिवपुरी में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत।

कृषि जगत सुनबे बारे सभी किसान भैया बहनन को मंगला भोजी की राम राम। और देखो जेठ को महीना चल रो है, दिन भरे सूरज आग उगलत है और अब देखो संजा बिरियस हुई उतर आई। भैया आज तो जब हम इतने चौपाल आवे के लाने निकले तो ऐसो लग रो सो कि भट्टी में से निकल रहे, इतनी गर्मी आए। और जो पेपर में उनने सोई छाप दई कि भैया हमारे इतने जबलपुर में कल खो तापमान जोन है तो वो 44.5 डिग्री है, तो सो सुन के अब वो पढ़ के तो और ही गर्मी लगने लगी। हमने कही हाय भैया आवे बारी समय में हमारे किसान भैया हरे कैसे खेतन में उतरें, कैसे काम करें। लेकिन भैया चलो संजा हो ही आई, दिन निकल गओ, गांव की चौपाल सोई सज गई, किसान भैया हरे देखो खेतन से लौट सोई आए। कहीं मटके को ठंडो पानी, कहीं नीम के नीचे बिछी खटिया। और अब शुरू होत है हमाओ अपन औरों को पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। और भैया देखो राम सेवक कक्का पंखा झलत भाई कह रहे कि अरे भूरा आज तो घाम ने जाने ले ली, हमने कब कक्का कछु और सोई बताओ। सो कहन लगे अरे दोपहरिया मुँह ऐसे लगत रहो जैसे आग बरस गई। कक्का अब का है भूरा कह रहा।

देखो तन्ना तो हवा सोई नरम हो गई, और रेडियो में आज बता रहे कि अगला हफ्ता और ही गर्म रहे। तो सरपंच दद्दा बोले कि भैया जे समय जोन है, जे किसानों के खातिर बड़े समझदारी के दिन होते हैं। खेत की जुताई, बीज की तैयारी, पानी को बचाओ, अब वैसे सोचने हैं। और भैया हमारी गुड़िया जोन है, हमारी गुड़िया को अभी हमने तुम्हारों को पिछली बेरा सुई बताई थी कि आजकल है ना कछु कछु लिखवे को सोई शौक होगा। सो मुस्कात भाई कहन लगी कि माटी कहे किसान से, मेहनत मोरे संग, पसीना जौन धरती पिए भर दे घर मा रंग। जेठ तपे चाहे घाम बरसे, हिम्मत मत तू हार, धान ज्वार और तुअर बोए के भर दे अन्न भंडार। भैया गुड़िया के लिखे शब्द शब्द में सच्चाई झलकत है। सांझ के करीब देखो 7:30 बज रहे, आसमान में हल्की सी लालिमा सोई है, गर्मी अभय बनी है, और रात में तापमान कोई तन्ना नीचे सोई जा सकत है। जो किसान भैया अब खरीफ की फसल की तैयारी में सोई जुट गए हैं। और कक्का देखो अब वैसे खेत की मेड़ सोई मजबूत कर लियो, बरसात आए के बाद समय नहीं मिलत। और देखो बीज को चुनाव भी सही करने चाहिए। और हमारी गुड़िया हमेशा यही कहते हैं कि प्रमाणित बीज लेने और खेत की माटी की जांच जरूर कराने हैं। अब नई नई तकनीक से खेती कर हैं, सो फायदा सोई मुझको हुए। और किसान भैया हमारे चौपाल में जो अंतुमात हो, सो नई खेती की बातें सुनो और अपनाओ, पानी बचाओ और धरती सजाओ, सो मेहनत से खुशहाली सोया है। और हमारे पड़ोस में हमने बताई थी ना कि रघुवीर कक्का रहते हैं, सो भैया हमने उनको देखो पहले तो वे पुराने तरीका अपनाउत थे, किसान जोन थे सो जितनी पुरानी पारंपरिक तरीका चले आ रहे, सो कई बेरा भैया फायदा नहीं ले पाते। अब उनने समय से बीज बदलो, टपक सिंचाई लगाई, हमारी कृषि जगत में जितनी बातें बताई जाऊत है बेसोई अपनाने शुरू करी, जैविक खाद अपनाई, और आज उन्हें किसान भर की मिसाल देखो पूरे गांव भर में दई जा रही। और भैया खेती में बदलाव सोई जरूरी है, खेती अब केवल मेहनत से नहीं जानकारी से सोई चलत है, काहे कि जागरूक किसान ही खुशहाल किसान है। और खुशहाली और बढ़ जाऊत है जब उमें लोकगीत की देसी महक मिल जाऊत है।

साची भैया, ऐसो लग रहो हो तो शोभना कश्यप जित जी को मंगला भवानी को बुलात भय कि साची अब भई बरसात होन लगे या मौसम में ठंडक आ जाए, ऐसे कि गर्मी से सभी परेशान हो रहे, हाहाकार सोई मची। और फसल के बाद अब किसान भैया अगली तैयारी की सोई सोच रहे कि पानी की चिंता अलग, लागत अलग। सो भैया ऐसे ही विचार करत करत मन में बात आने लगा था जो देखो गीता भौजी इतनी गर्मी में सोई टहलन निकल जाते हैं। सो भैया हम तो गीता भौजी को हमेशा जी कहते कि भौजी तुम कितना घूम लो, वजन नहीं कम होने। सो अब वे कहन लगी आज सवेरे हमसे कि मंगला भौजी तुम जब देखो तब हमें टोक दे दो, हैं तुम समझती नहीं हो हमाओं को वजन कम करने बहुत ही जरूरी आए। और अभी तो हम आजकल गर्म पानी के संगे शहद सोई लेते हैं। हमने कही अच्छा शहद कहाँ से लात हो तुम? कहने लगी अरे लो कैसी बात कर रही, तो हम शहद कहाँ से लाएं, हमारे तो घर ही में मधुमक्खियों को पालन करो जाते हैं, शहद घर ही को रहता है, बिल्कुल शुद्ध देसी शहद। हमने कही अरे वाह भैया, आजकल खेती के संगे संगे मधुमक्खी पालन भी।

0: बढ़ रहा है और जौन मधुमक्खी डंक तो मारत है लेकिन किसानों की कमाई भी बढ़ाऊत है। और भैया ऐसी बतकाओ करत करत हमारे रमेशर कक्का कहन लगे कि फूलन पर जब भौरा गावे मधु की खुशबू गांव महकावे, माटी पानी खेत और किसान मधुमक्खी से बढ़े सम्मान। तो भैया बात तो बिल्कुल साँची है, मधुमक्खी पालन से शहद तो मिलते ही है, संगे संगे फसल में परागण सुई बढ़ जात है और इसे उत्पादन भी ज़्यादा होते है। और हमारे ते जो लल्लन है वे पाठशाला जाऊत हैं तो उनने हमें बताया कि मंगला भौजी तुम्हें पता है कि आज जोन है विश्व मधुमक्खी दिवस मनाओ जाऊत है और किसानन को समझाओ जाऊत है कि मधुमक्खी केवल शहद नहीं खेती को सबसे बड़ी साथी आए। और भैया उन्हें बताए कि जोन मधुमक्खी ना हुए हैं सो परागण ना हुए है और हमारी कितनी ऐसी फसलें हैं जो समाप्त हो जाए हैं अगर मधुमक्खियों का पालन ना करो जाए, उनको सही तरीका से रहने ना दो जाए, कैसे कि इसे रोजगार भी मिलत है और जोन गांव के युवा थोड़ी ट्रेनिंग लेके मधुमक्खी पालन शुरू कर दें सो भैया कम लागत में काम शुरू हो जाता है, शहद मोम और दूसरे उत्पाद सोई बिकत हैं, फसल की पैदावार बढ़त है। मानो सबसे ज़रूरी बात ये है जो हमें ध्यान देने हैं कि खेतन में जहरीली दवाई कम इस्तेमाल करने चाहिए, हो सके तो नहीं करें, नहीं तो मधुमक्खियाँ जो है जे मर जाते हैं। और तभी तो कहो जात है मधुमक्खी बचाओ खेती बचाओ प्रकृति संग अपन नाता निभाओ। सो आज की चौपाल में हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही कि खेती केवल हल चलान तक सीमित नहीं है, अब नई नई तकनीक और मधुमक्खी पालन जैसे काम करके सो किसान भैया हरे अपनी ताकत बढ़ा सकत हैं, अपनों देश की थाली को अनाज उपजा सकत हैं।
1: Hey guys,
2: hey, पार्टी चाहिए,
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे,
3: आइडिया यही करते हैं पार्टी,
2: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे,
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: भैया गर्मी इतनी हो रही है कि हम इंसान तो छोड़ो हमारे ढोर बछेरू तक परेशान हो गए, अब हमारी गौरी खोई ले लो। अब गौरी जोन है दूध तो दे रही है लेकिन परेशान सी सोई दिखाऊत है, खावे को डालो चारा दे सो खावे में नानुकुर करत है, इच्छा ही ऐसे लगत है जैसे उनका मन ही नहीं हो रहा। सो हमने सोची कि भैया इतनी परेशानी सी लग रही, जोन ढंग से अन्न ना खाए अनाज ना अपना चारा ना खाए सो कैसे काम चले, सो हम गए डॉक्टर साहब के पास। हमने डॉक्टर साहब को बताई तो डॉक्टर साहब बोले ऐसे तो पोषण पूरा नहीं मिले हैं, गैया है सो का भाव, पोषण तो पूरे सभी को जरूरी है। हमने कहा डॉक्टर साहब अब परेशानी तो बड़ी हो रही है, करें सो का करें। सो उनने कही कि देखो आजकल पशु चॉकलेट सो ही आ रही। हमने कही पशुओं की चॉकलेट, हो भैया भाई ना हैरानी, ऐसे ही हम सोई हैरान भाई। सो हम डॉक्टर साहब बोले कि का होता है आप चारा डालो और उनको मन नहीं है, चाहे मौसम चाहे तबीयत चाहे जो कछु कारण हुए, लेकिन जो उन पशु चॉकलेट रहते हैं उसमें एक पूरा पोषण को आधार बना के बनाई जाता है और जिसे होता है कि हमारे जितने ढोर बछेरू हैं उनको अपन ने जैसे एक निश्चित पोषण के लाने एक पशु चॉकलेट दे दी, सुबह धीरे धीरे चाटत रहे थे और उनकी जो जरूरत है बेसोई पूरी हो जाती है। और इतो ही नहीं है पशु चॉकलेट एक बड़ो उभरत भाव काम सोई है, सो आप सभी इसे लाभ ले सको इके लाने हमारी चौपाल में अपने संगे हैं डॉक्टर राहुल शर्मा। सो ध्यान से सुनो पशु चॉकलेट की पूरी जानकारी।
4: किसान भैया हरो, जब अपन खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो अपन यही चाहते हैं कि अपने जो पालतू पशु हैं वे स्वस्थ रहें तंदुरुस्त रहें, और ई के लाने अपन यही कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छो पोषक आहार मिले ताकि वे अपने लाने लाभ को धंधा बन सके या हम उनसे लाभ उठा सके। तो भैया ऐसे ही कछु बातें आज अपन कर रहे पशु चॉकलेट के बारे में, और ये विषय पे आज अपन को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देवे के लाने उपस्थित हैं डॉक्टर राहुल शर्मा जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु पोषण विभाग नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में। तो डॉक्टर राहुल शर्मा जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, और जैसो की आज को अपनो विषय है की पशु चॉकलेट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमें जय बताएं कि पशु चॉकलेट होत का है।
5: पशु चॉकलेट उच्च ऊर्जा प्रोटीन मिनरल और विटामिन युक्त ऐसे पिंड या ब्लॉक होते हैं जो कि आयताकार वर्गाकार अथवा बेलनाकार हो सकते हैं। इन्हें पशुओं को दैनिक रूप से हरे चारे, भूसे एवं सांद्र आहार या दाने के साथ पशु की दैनिक पोषक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है।
4: तो जा तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पशु चॉकलेट का होते है। अच्छा जब बताओ आप हमारे सब श्रोता जय सुनबो चाहते हैं कि पशु चॉकलेट की आवश्यकता काय पड़त है।
5: हाँ, पशु चॉकलेट की आवश्यकता समझने के लिए हमको अपने देश के बारे में और यहाँ पे उपस्थित मानव जनसंख्या, पशुधन संख्या के बारे में कुछ आंकड़े समझने की जरूरत है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.3 हिस्सा बनाता है, जबकि इसके साथ ही भारत विश्व की कुल जनसंख्या की 20% जनसंख्या और विश्व की कुल पशुधन संख्या की 21% पशुधन संख्या भारत में ही निवास करती है, जिस कारणवश मानव आबादी तथा पशुधन आबादी में खाद्यान्न उपलब्धता हेतु लगातार संघर्ष जारी रहता है, जिसमें सदैव अनाज के दाने जो कि मानव तथा पशुधन दोनों के मुख्य खाद्य अवयव हैं के लिए प्राथमिकता मानव आबादी को दी जाती है और पशुधन अनाज के दानों की उपलब्धता हेतु उपेक्षित होते हैं। साथ ही पशुधन में उच्च पोषक मान के आहार हेतु सदैव उत्पादक अथवा दुधारू पशुओं को ही प्राथमिकता दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि करने वाले बछड़े बछिया या दुग्ध उत्पादन न करने वाले एवं गाभिन पशु पोषक आहार की उपलब्धता हेतु सदैव उपेक्षा का शिकार होते हैं। इसलिए पशु चॉकलेट एक ऐसा विकल्प तैयार किया गया है जो कम धन खर्च में पशु की लगभग सभी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि डेयरी व्यवसाय में दुग्ध उत्पादन के कुल खर्च में पशुओं के दाने चारे में ही लगभग 65-70% धन खर्च हो जाता है। अतः इस विकल्प द्वारा पशुपालक कम खर्च में दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं।
4: हाँ, मतलब ये जो पशु चॉकलेट है कम खर्च में और अच्छे पोषक तत्व हमारे पशुओं को मिल जाते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। और अब जो जानबो चाहते हैं कि पशु चॉकलेट पशु को खिलावे के इनके का लाभ होते हैं, जैसे अपन उन्हें दें तो।
5: ऐसे तो पशु चॉकलेट अनेक प्रकार से पशुपालक एवं पशुधन के लिए लाभकारी है। इसके कुछ लाभ इस प्रकार हैं, जैसे सर्वप्रथम तो लाभ यही है कि यह प्रति पशु प्रतिदिन खाद्य खर्चे में 12-15 रुपए तक प्रतिदिन की कटौती कर सकता है। पशुओं को अगर इसका उपयोग किया जाए तो खनिज या मिनरल की कमी से होने वाली हीनताजन्य बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इसे देने से प्रजनन योग्य पशु समय से गर्मी या हीट पर आ जाते हैं, साथ ही पशु का दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होने वाले हीनताजन्य बीमारियों से भी पशु की सुरक्षा होती है। इन सभी कारणों से पशुपालक के पशुधन स्वस्थ रहते हैं, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि होती है और पशुपालक को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और अब देखो पशु चॉकलेट जो आप बता रहे हैं कि इतनो ज्यादा उपयोगी है अपने पशुधन के लाने, उनके स्वास्थ्य के लाने, उनके पोषण के लाने, तो जा तो जाहिर सी बात है कि जय कछु एक चीज से ना बनत हुआ है, जरूर जा दो चार चीजों से मिलके बनत हुआ है। तो अब हम आपसे जो ही जानना चाहते हैं कि पशु चॉकलेट कौन कौन से अवयवों से मिलके बनत है।
5: यह पशु चॉकलेट बनाने के लिए हम ज़्यादातर कृषि उपजातों या जिनको एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट कहते हैं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से सस्ते होते हैं और सामान्यतः कृषकों के पास उपलब्ध होते हैं। जैसे सामान्यतः पशु चॉकलेट के निर्माण में मोलेसिस, जो कि गुड़ या चीनी के निर्माण के दौरान प्राप्त होने वाला एक उपजात है, का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गेहूं अथवा गेहूं के चोकर अथवा राइस पॉलिश, सरसों की खली अथवा मूंगफली की खली, खनिज मिश्रण, नमक, बिना बुझा हुआ चूना, गेहूं का आटा, यूरिया एवं ग्वार गम का उपयोग पशु चॉकलेट बनाने में किया जाता है।
4: तो डॉक्टर साहब सबसे जो खास बात है हमारे किसान भैया बिल्कुल जानबो चाह हैं कि ये जो पशु चॉकलेट है का अपन घर पे को तैयार कर सकते हैं, और यदि तैयार कर सकते हैं तो की विधि जरूर आप बताएं।
5: बिल्कुल, इसको हमारे पशुपालक और कृषक भाई अपने घर पर अपने पशुओं के लिए तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने की दो प्रमुख विधियां हैं, एक विधि है गर्म विधि और दूसरी है ठंडी या शीत विधि। चूंकि गर्म विधि में चॉकलेट बनाने में पशु चॉकलेट की लागत अत्यधिक आती है, साथ ही यह थोड़ी कठिन भी है, इसलिए मैं ठंडी विधि

0: द्वारा पशु चॉकलेट बनाने की सलाह प्रायः कृषक भाइयों को देता हूँ। ठंडी विधि में पूर्व में बताए हुए अवयवों को उचित अनुपात में आपस में अच्छी तरह से मिलाकर उन्हें आयताकार अथवा वर्गाकार या बेलनाकार सांचे में डालकर उन्हें दूसरे भारी सांचे से दबाया जाता है और फिर इसके बाद जब वह अच्छी तरह से संपीड़ित हो जाएं तो उन्हें उस खांचे से निकाल के 4-5 दिन छाया में सुखाकर पशु को खाने को दिया जाना चाहिए।
1: तो फिर अपन कौन प्रकार से इनको दें या कछु मात्रा उनकी निर्धारित रहत हुए कि कैसे अपन उनको खावे खिलाने पशु चॉकलेट दें?
0: पशु चॉकलेट पशु को खाने के बर्तन में, जिस बर्तन में उसको या मेंजर में उसको खाने को दिया जाता है चारा भूसा दाना, उसी के साथ उसको भी पशु चॉकलेट दिया जा सकता है। अथवा ये जो पशु चॉकलेट है ये पशु चाट कर खाते हैं, तो उसको चाट कर खाने के लिए पशुओं के सामने यह रस्सी के सहारे भी टांगा जा सकता है। परंतु इसमें एक बात की सावधानी रखना बहुत आवश्यक है कि पशु इसको एक बार में ही पूरा चबा कर ना खा जाए, तो इससे बचने के लिए पशु के सामने यह पशु चॉकलेट आधा से एक घंटे के लिए ही दिन में रखना चाहिए। इतनी समय में पशु 500 से 700 ग्राम पशु चॉकलेट चाट कर खा लेता है, जो कि उसकी प्रतिदिन की एक दिन की पोषक आवश्यकता को पूर्ण करता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जा तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि कैसे अपन को खावे देने और कितनों देने हैं कि ज़्यादा ना खा पाए। अच्छा, अब जैसे कई बार किसान भैया घर में तैयार ना कर पाए तो बाजार में जो चीज़ उपलब्ध हो पाए कि नहीं?
0: जी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में यह पशु चॉकलेट जबलपुर में स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर के पशु पोषण विभाग के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है, जिसे पशुपालक विश्वविद्यालय से 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्रय करके अपने पशु को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर राहुल शर्मा जी, आज आपने पशु चॉकलेट के बारे में हमारे किसान भैया हरों को बहुत अच्छी जानकारी दी। एक इलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
3: सो भैया, जब से हमारी गौरी ने जे पशु चॉकलेट खाई है सो अब तो वो बढ़िया चंट सी हो गई। और हमारी जो सुमनजीत जी हैं, उनने जब मिली थी उस समय राहुल, डॉक्टर राहुल से, सो वे इतनी प्रभावित भई कि उनने पशु चॉकलेट के व्यवसाय के लाने व्यवस्था सुई कर ली। और अब देखो, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि हमारी जिज्जी जोन है वे बहुत बढ़िया उम्दा पशु चॉकलेट का व्यापार सुई करें। सो भैया, जितने भी अवसर होते हैं वे हमेशा आगे बढ़वे के लाने होते हैं, बस जरूरत है कदम बढ़ावे की। और देखो, कदम बढ़ावे में सबसे पहले जोन हम जिनको याद करते हैं वे हैं हमारे भोलेनाथ और गिरीश झा भैया। भोले के देश की कैसी बात कर रहे, सो भैया मिल के तन्ना ईश्वर को नाम लेते हैं गिरीश झा भैया के संगे।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
4: सो किसान भैया हरों, हमारी चौपाल में हर तरह की भत्काव होते हैं और इमे आज देखो प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती सुई है और छायावादी युग के चार प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं पंत जी। उत्तराखंड के कोसानी गांव में जन्मे, प्रकृति से उनको बड़ो प्रेम है तो, और उनकी कविताओं में पहाड़, खेत, पेड़, बादल, किसान और गांव की माटी की खुशबू सुई मिलत है। अब देखो गुड़िया आज सुई पूछ रही कि का मंगला भौजी उनने किसानों के बारे में सुई लिखो है? सो हमने बताई कि भैया उनकी कई रचनाओं में किसान जीवन और प्रकृति को सुंदर चित्र मिलत है। पंत जी मानत थे कि किसान धरती को सच्चो पालन आ रहा है और उनकी प्रकृति से जुड़ी इतनी रचनाओं में जो हम जब विद्यालय जाओ थे सो हमारी शिक्षिका ने हमको एक किताब दी थी ग्राम्या, और जे काव्य संग्रह गांव और किसान जीवन पर आधारित है। इमें खेतों की हरियाली, श्रम, बैल, हल और ग्रामीण संस्कृति को सुंदर वर्णन मिलत है। सो हमें लगत है कि हमारे किसान कई बार सोचते हैं कि हमारे ऊपर कौन लिखे, हमारे बारे में कौन सोचे। सो भैया पंत जी ने उनके बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया, जैसे धरती कितना देत है। इस भावना के माध्यम से पंत जी किसान और प्रकृति के रिश्तों को सोई दिखा गए। और पल्लव संग्रह में प्रकृति को कोमल सौंदर्य सोई मिलो, पेड़ पौधे, नई फसल, बसंत और खेतों की हरियाली को बड़ो मधुर चित्रण मिलत है। और भैया युगांत में समाज और श्रमिक वर्ग की पीड़ा को वर्णन, तभी तो उनकी कविता पढ़ के खेत खलिहान जौन है वे आँखों के सामने आ जाऊत है। और हमारे पंत जी को आज हम सभी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और भैया देखो बतकाओ करत करत चलवे की बिरिया सुई हो गई, सो स्वीकारो मंगला भोजी की। राम राम, जय जवान, जय किसान।

अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज हमारी चर्चा का फोकस है प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत इटली के द्विपक्षीय संबंधों को नया विस्तार। इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। अम्बेसडर वाधवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा उनके 5 देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है। आप इटली में हमारे पूर्व राजदूत रह चुके हैं, तो आपने न केवल भारत इटली के संबंधों की प्रगति देखी है बल्कि इसे आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस यात्रा में अपने मीडिया ब्रीफिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अब अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की।
1: अम्बेसडर वाधवा, प्रधानमंत्री का ये जो इटली दौरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत कैसे बनाएगा, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को अपग्रेड करके एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है, तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये बदलाव?
2: देखिए, भारत और इटली के जो संबंध हैं पिछले कुछ सालों में हमने देखा है इसमें लगातार प्रगति हुई है। और 2015 के पहले भारत और इटली के संबंधों में एक नीचाई देखी गई थी, जो क्योंकि मरीन्स का इशू हमारे सामने आया था और उसके साथ साथ भारत और इटली के संबंध काफ़ी नीचे चले गए थे। इटली की जो इन्वेस्टमेंट थी भारत में वो यूरोपियन देशों की तरफ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा थी एक समय पर। उसके बाद इटली दूसरे नंबर पर था, लेकिन जो मरीन्स इशू था उसके चलते इन संबंधों में एक गिरावट आई। 2014-15 के बाद हमने देखा जब भारत और इटली ने इस इशू को ब्लैक बर्नर पर रखा और दोनों ने डिसाइड ये किया कि इसकी मध्यस्थता की जाए, तो जो स्पेशल कोर्ट है उसके तहत इस केस को ले गए।

0: जी
1: दोनों देश आपसी सहमति के साथ में। और उसके बाद से हमने देखा है कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है।
0: जी
1: तो इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इटली गए हैं ये उनकी पहली बायलैटरल विजिट
0: बिल्कुल
1: है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी कई बार इटली जा चुके हैं लेकिन किसी और संदर्भ में गए
0: जी
1: थे। और इस बार इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको उन्होंने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का रूप दिया है। इस बार जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है उसमें जो व्यापार है और इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके साथ साथ रक्षा और क्लीन
0: जी
1: एनर्जी
0: बिल्कुल
1: टेक्नोलॉजी,
0: बिल्कुल
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, एजुकेशन और काउंटर टेररिज्म के ऊपर, फाइनेंसिंग के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर भी बात हुई है। तो
0: जी
1: बहुत सारे मुद्दे इस विजिट में उठे हैं।
0: अम्बेसडर वाधवा, आपने भी कहा कि इस दौरे के दौरान बहुत चीज़ों पे दोनों देशों के बीच में बात हुई, और आपने जैसा कहा कि आर्थिक उसमें जो एक सहयोग है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो नई दिल्ली और रोम के बीच 2025 में 16.77 बिलियन डॉलर्स तक का व्यापार हुआ था, और प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में 2029 तक ट्रेड जो है, व्यापार है, उसको 23.2 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 20 बिलियन यूरो से ज्यादा पहुंचाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है।
0: अम्बेसडर वाधवा, अभी आपने सुना जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश बहुत मजबूती से अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो भारत और जो इटली है, दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, भारत की अपनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास एक बहुत ही बहुत बेहद गुणकारी लोग हैं, बहुत स्पेशल हमारा टैलेंट पूल है, हमारी एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है, और वहीं जो इटली है उसके पास अपनी वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। तो दोनों देश अपनी अपनी जो उनकी विशेषताएं हैं उनको कैसे अपने दोनों के व्यापार को और दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: देखिए, भारत और इटली की जो इकोनॉमीज हैं काफी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं दोनों के बीच में। और जब जॉइंट एक्शन स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान निर्धारित किया गया था 2025-2029 का, तो उसमें ये तय हुआ था कि ये जो रोड मैप है बायलैटरल कोऑपरेशन का उसमें व्यापार और इन्वेस्टमेंट एक अहम उसका स्तंभ रहेंगे। और उसके चलते दोनों देशों ने काफी कोशिश करी है कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इटली की तरफ से जो इनोवेशन है और फैशन है और लग्जरी है जिनके लिए इटालियन कंपनीज जानी जाती हैं, एक बहुत ही वाइब्रेंट एसएमई सेक्टर है जिसके चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन में इटली यूरोप में पहले नंबर पर एक समय पर पहुंच गया था। तो मशीनरी के तौर पर देखें तो इटली दुनिया भर को अपनी मशीनरी सप्लाई करता है। तो इसके चलते जो जो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें हमने देखा है कि भारत के साथ इटली की काफ़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं। इसी के चलते जो 800 और जो जो कंपनियां इटली की भारत में अब आजकल सक्रिय हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे खाद्य पदार्थ हुए जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर है। भारत में हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन और रेफ्रिजरेशन और फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी चर्चा काफ़ी सालों से हो रही है, किस तरह से जो फूड प्रोडक्शन है उसको बचाया जा सके और जो वेस्टेज है उसको कम किया जा सके, तो उसमें इटालियन कंपनीज काफ़ी सक्रिय हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट के जो क्षेत्र हैं उसमें

0: इटालियन कंपनीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो भारत ने देखा है कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसकी जो डिमांड है इटली में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पांच छह ऐसे सेक्टर्स भारत के हैं जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, लेदर आप देख लें और उसके
1: जी
0: साथ साथ टेक्सटाइल्स वगैरह। तो ये सभी सेक्टर्स इटली में इनकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। तो ये जाहिर है कि जो टारगेट इन्होंने सेट किया है 20 बिलियन यूरो का एनुअल ट्रेड बाय 2029,
1: जी
0: मुझे लगता है उससे पहले ही ये पार हो जाएगा।
1: जी अभी आपने भी कहा और अब प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी मीडिया ब्रीफिंग में ये जो इटली की हम बात कर रहे थे कि उसकी जो एक विशेषता है उसकी की डिज़ाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में जो गुणवत्ता में उसकी उसके लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस पर भी एक टिप्पणी की थी, चलिए सुनते हैं।
2: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
1: अम्बेसडर बाधवा, अभी जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दोनों देशों की उन्होंने जो हमारी विशेषताएं हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स, उनकी बात की, फिर उन्होंने कहा डिजाइन एंड मेक इन इटली एंड इंडिया एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले इतने दो दश पिछले 11 साल से जो भारत में सरकार है, पूरा फोकस जो रहा है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की रहा है, और अब इसमें हम दूसरे देशों के साथ भी जो साझेदारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: तो हमने जैसा देखा है कि जैसे कि आपने कहा, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा
1: जी
0: है और उसके चलते काफ़ी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम है, जिसका मकसद यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में उसको 15% से लेकर जीडीपी की 15% से लेकर 24% 25% तक ले जाया जा सके। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, लेकिन वो तभी संभव होगा जबकि भारत में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड वस्तुएं हैं
1: जी
0: उनका उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, और इसके लिए एक इनपुट चाहिए, जो फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके साथ काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो इटली का जो डिज़ाइन और जो प्रिसिशन प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, जिसका उसके चलते भारत में ये जो स्केल है उसको आगे कर और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह जो इटली के जो फिनटेक और फैशन की जो एरियाज
1: जी
0: हैं, भारत में जो मोबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी,
1: जी
0: इटली और इंडिया के बीच में मोबिलिटी एग्रीमेंट भी साइन हुई है,
1: जी
0: और इसके चलते जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो टैलेंट है भारत का वो इटली में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अपने स्पीच में आज उसका जिक्र किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान एक और फोकस एरिया था जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईमैक, इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने कल रोम पहुंचने के बाद इसके बारे में ट्वीट भी किया था। पिछले कुछ सालों में जब दुनिया ने किसी न किसी वजह से सप्लाई चेन में रुकावट देखी है, तो आईमैक में को बढ़ावा देना और इसमें सहयोग कितना जरूरी है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि इटली के लिए भी, जो कि कुछ साल पहले तक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था लेकिन उसके बाद बाहर हो गया था।
0: बिल्कुल, आपने जैसे सही कहा, क्योंकि भारत और इटली आईएमएफ के प्राथमिक पोल्स हैं। भारत एक तरफ है और इटली दूसरे एंड पर है। बीच में दूसरे जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है और ग्रीस है, इस तरह के कंट्रीज, और इसराइल को मिला लें उसमें, ये सभी कंट्रीज आईएमएफ के प्रमुख पात्र हैं। आईएमएफ का क्या मतलब है? आईएमएफ का मतलब यह है कि जो सप्लाई चेन्स इस एरिया में डेवलप हो सकती हैं इस कनेक्टिविटी के थ्रू. उसके साथ साथ जो गैस की पाइपलाइंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं वो सभी इसी कॉरिडोर के थ्रू डेवलप हो सकती हैं. और रेल रोड्स का जो एम्फेसिस है आईएमएक का उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी. और जो पोर्ट्स हैं दोनों एंड्स पर

0: भारत में और इटली में उनके चलते जो व्यापार है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी।
1: जी
0: तो ये सभी 5 या 6 सेक्टर्स हैं जो आईएमएफ के थ्रू डेवलप हो सकते
1: जी
0: हैं, और इटली और भारत दोनों आईएमएफ के डेवलपमेंट में इक्वल साझेदार हैं। उनको उनकी बहुत चाहत है कि आईएमएफ सक्सीड करे ताकि ये इन सभी क्षेत्रों में भारत आगे बढ़े। और आपने जैसे कहा कि
1: जी
0: इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया था, उसने यही देखा है कि BRI जो जो है वो ओपेक है और उससे कई सारे प्रॉब्लम्स उपस्थित हुए हैं दूसरे देशों में, और इटली नहीं चाहेगा कि उसकी उसको रेप्लिकेट किया जाए
1: जी
0: इस कॉरिडोर में।
1: अम्बेसडर अनिल वाधवा, आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने आपने वक्तव्य और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, सुर्खियों के आज के अंक को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अब्दुल्ला फिल्म के लिए। श्रोताओं, आपने सुना मोहम्मद रफी का गाया ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी और सुरों में ढाला संगीतकार आर डी बर्मन ने।

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

किशोर कुमार का गाया ये गीत आपने सुना फिल्म निशान से। गुलशन बावरा का गीत, राजेश रोशन का संगीत निर्देशन। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर का गाया ये गीत हमने लिया है फिल्म पाकीज़ा से। कैफ़े आज़मी के बोल गुलाम मोहम्मद का संगीत निर्देशन।

इम्तिहान फिल्म के लिए आपने सुना किशोर कुमार का गाया ये गीत, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं नूर महल फिल्म का ये गीत, जिसे गाया सुमन कल्याणपुर ने। सबा अफगानी के बोल, जानी बाबू का संगीत निर्देशन।

नूर महल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद ठीक 9 बजे न्यूज एट 9। समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है।

0: इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और कृषि सहित प्रमुख क्षेत्र

0: क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप हैज ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: Speaking on the

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड

0: मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी, तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इजराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
2: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आप

0: आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जैसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
1: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी, वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
2: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज़्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूँ, पर भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज़ उठा रहा है जिसकी आवाज़ बहुत पहले उठाए जाने की ज़रूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज़ को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
3: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
0: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई, जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में, उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने

0: कराना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए, तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया, जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था, जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया, जो ये उनका जो ब्लैकमेल है, ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
2: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
0: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया, 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं, जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें, बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे, तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे, जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
2: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वांट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इनटू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से, कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज़्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने

0: वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूँगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफ़ी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
2: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहाँ की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं हैं और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
3: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना, भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु

0: तो भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
0: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
2: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार यह साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित जसराज का गाया राग मियां की तोड़ी में ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने सुना पंडित जसराज का गाया राग मियां की तोड़ी में ख्याल। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है मन भावन। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम के साथ आपका दोस्त कृष्ण कुमार। तो श्रोताओं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हाँ, एक बात और जो हर बार कहता हूं, जो मन को भा जाए वही तो होता है मन भावन। श्रोताओं, ये है कार्यक्रम की पहली पेशकश।

अन्नदाता इस फिल्म के लिए श्रोताओं आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में ये नगमा। इसे लिखा योगेश ने और सुरों में ढाला संगीतकार सलील चौधरी ने। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध आप सबका दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, छत्तीसगढ़ बेमतेरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र व्रजकांत सारथी, इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम वलीउल्लाह नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब यूसुफ इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल बजाज, बिलहरी बड़खेड़ा कटनी से संतोष ठाकुर, अवधेश दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, मुन्ना खान और सुनील सिंह, पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज बाड़ोदे, जरूर वरुड़ से बाबा साहब बाड़ोदे और चंद्रप्रभा बाड़ोदे।

हम हिंदुस्तानी फिल्म के लिए श्रोताओं आपने सुना मुकेश का गाया ये गीत, बोल भरत व्यास के थे, संगीत एसएन त्रिपाठी का। इस गीत के लिए फरमाइश आप सबकी जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा से लक्ष्मण रैकवार, विनीता, दीपेश, वैष्णवी, वैशाली, हल्ले ऋषि रैकवार, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा, इल्मा, असलम सैफी, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान, बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल, अर्जुन गवनीकर, धीरज सबवसेरे, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, यहीं से खुशी और रौनक सेन, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मगरलोड छत्तीसगढ़ से ही पुन्नूराम साहू, राज तेजस्वरी साहू, राजश्री राजवीर साहू और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर।

हिंदुस्तान की कसम, मन्ना डे का गाया इस फिल्म का गीत आपने सुना। कैफी आजमी कबूल मदन मोहन का संगीत था और फरमाइश आप सबकी ग्राम पिंडरई जिला मंडला से सुमित कुमार जैन, मीना जैन, कबीर जैन, वरुण जैन और वान्या जैन, नर्मदा कॉलोनी मंडला से प्रोफेसर सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली, लकी, श्वेता और परु, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका राणा, टीकमगढ़ पलेरा से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और उनके परिजन, खापरखेड़ा रायसेन से तुलसी राम साहू, हेमंत कुमार साहू, मुकेश कुमार साहू, आरती ममता और गोमती, आदर्श नगर मलोट राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतीक बिरक और मीका बिरक।

काला बाजार फिल्म का ये नगमा आपने सुना, मोहम्मद रफी का गाया, शैलेंद्र के बोल थे, एस डी बर्मन का संगीत निर्देशन। और इस गीत को पसंद किया आप सबने। गोरखपुर जबलपुर से प्रेमनाथ मिश्रा, कल्याणी मिश्रा, रिया मिश्रा, शलभ रक्षा मिश्रा, वैष्णवी और रुद्रांश मिश्रा, यहीं से आशीष चौबे, ऋचा चौबे, शानवी चौबे, पी एन मिश्रा, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया, पानदरीबा जबलपुर से राजकुमार नामदेव, अंकित नामदेव, आनंदिता नामदेव, शोभा राजकुमारी, हर्षिता, पिंकी, नीतू और गौरी, सतना बिल्डिंग जबलपुर से अनीता तिवारी, अंजना तिवारी, बीना तिवारी, ज्योति और गौरी, पोलीपाथर जबलपुर से दिलीप रजक, सुमन रजक, राज रानी और सागर रजक, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश शिवम, शुभांग और सृष्टि गद्रे, जबलपुर कैंट से लखन राही, लक्ष्मी राही, सिद्धार्थ राही और सृष्टि राही।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आ फिल्म के लिए मुकेश का गाया ये गीत, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जय किशन का संगीत निर्देशन और फरमाइश आप सबकी। सिंहपुर बाड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले आपने लिखा, गौतम नगर जिला नांदेड़ से अब्दुल गफार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर आपने लिखा, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, ग्राम पंचायत बठेना से लिखने वाले श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी जो

कार्यक्रम मन भवन के आखिर में श्रोताओं आप सुन रहे हैं खामोशी फिल्म के लिए हेमंत कुमार की आवाज में ये नगमा, गुलजार के शब्द, हेमंत कुमार का ही संगीत। पसंद आप सबकी सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या, देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। इसी गाने के लिए बोरखेड़ा पिरामल से जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूड़त। मोटका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता लिखते हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल। बनियापारा धमतरी के रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, पूजा और इनका माखीजा परिवार, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। आपने लिखा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मन भावन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी

0: के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums.